हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून 2026, प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हाँ, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रही है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के

0: राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलानबटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:05 हो रहे हैं। समय है आज के विचार का। सुनिए आज का विचार। विषय रहेगा विवेक। जी हाँ, विवेक विषय पर सुनिए आज का विचार। वाचक स्वर है श्री मिलन पांडे का।
2: विवेक के बिना केवल क्रिया से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। शक्ति विवेक में है, क्रिया में नहीं। क्रिया करने में करण की मुख्यता रहेगी तो करण का आदर होगा। करण का आदर ही अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण की अशुद्धि वास्तव में कर्ता की अशुद्धि है, क्योंकि कर्ता का दोष ही करण में आता है। जैसे मनुष्य चोरी करने से चोर नहीं बनता, प्रत्युत चोर बनकर चोरी करता है। चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ होता है। अगर कर्ता की नियत शुद्ध हो तो वो चोरी नहीं कर सकता। अंतःकरण को शुद्ध करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कर्ता को शुद्ध होने की आवश्यकता है। अगर करण को शुद्ध करेंगे तो परिणाम में क्रिया शुद्ध होगी। कर्ता कैसे शुद्ध होगा? जैसे कलम बढ़िया होगी तो लेखन कार्य बढ़िया होगा। लेखक कैसे बढ़िया हो जाएगा? कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से। संबंध विच्छेद होने पर और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होता है विवेक का आदर करने से। एक मार्मिक बात है कि अंतःकरण अशुद्ध होने पर भी विवेक जागृत हो सकता है। इसीलिए कई जगह कहा गया है कि पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी ज्ञान और भक्ति प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि अपने कल्याण का दृढ़ उद्देश्य हो जाए तो पूर्वकृत पाप विवेक

0: की जागृति में बाधक नहीं हो सकते। पाप तभी बाधक हो सकते हैं जब विवेक कर्मों का फल हो, लेकिन विवेक कर्मों का फल है ही नहीं, कर्मों के साथ विवेक का संबंध है ही नहीं, अतः विवेक का पापों से विरोध नहीं है। साधक को चाहिए कि वो अपने विवेक को जागृत करे। विवेक प्राणी मात्र में है, लेकिन जिससे परम तत्व की प्राप्ति कर सकें ऐसा विवेक मनुष्य में ही है। यह विवेक कर्मों का फल नहीं है अपितु ईश्वर प्रदत्त है। यह बुद्धि से आता है, बुद्धि का गुण नहीं है। अतः बुद्धि तो कर्म के अनुसार होती है, लेकिन विवेक कर्म के अनुसार नहीं होता। अगर विवेक को पुण्य कर्मों का फल माने तो शंका पैदा होगी कि बिना विवेक के पुण्य कर्म कैसे हुए। लौकिक पदार्थों की प्राप्ति की क्रिया तो होती है, पर ईश्वर की प्राप्ति विवेक से होती है। मुक्त करने की शक्ति विवेक में है, क्रिया में नहीं। अगर मनुष्य में विवेक की प्रधानता हो तो वह प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य का खास काम है प्राप्त विवेक का आदर करना, उसको महत्व देना। विवेक का आदर करने से वह विवेक ही बढ़कर तत्वबोध में परिणित हो जाता है।
1: ये था आज का विचार। विषय था विवेक। आज के विचार को आपने सुना श्री मिलन पांडे से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:10 होने को हैं। समय है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। भजन की प्रस्तुति है हरिहरन और साथियों की।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, प्रस्तुति थी हरिहरन और साथियों की। लीजिए सुनिए अगला भजन अनुराधा पोडवाल और साथियों के साथ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में ये प्रस्तुति थी सुरेश वाडेकर की। लीजिए सुनिए अंतिम भजन अनुप जलोटा और साथियों के साथ।

अनूप जलोटा की गाय इस भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:30 बजने को है समय है रामचरितमानस गान का। कार्यक्रम में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 115 से दोहा संख्या 118 तक का सस्वर पाठ।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वता एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में प्रातः 6:45 पर किसान श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में कृषि में कीटनाशकों का उपयोग, पशुधन व मनुष्य पर प्रभाव विषय पर जानकारी देंगे श्री दीवान दान रत्न। प्रातः 6:50 पर आप लोक भजन का आनंद ले सकेंगे। सुबह 7:00 होगा कार्यक्रम सुप्रभात। चर्चाएं रहेंगी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, विश्व दुग्ध दिवस और नीलम संजीव रेड्डी पुण्यतिथि जैसे विषयों पर। हमारी पहली सभा में फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप सुबह 7:30 उठा सकेंगे। तत्पश्चात सुबह 10:00 से लेकर दिन में 12:40 और दोपहर 2:30 का समय रहेगा हमारी पहली सभा में फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। सुबह 8:30 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आप सुनेंगे काव्य पाठ, कवि होंगी कौसर भाटी। सुबह 9:10 का समय रहेगा लोक संगीत का। सुबह 9:30 लेकर उपस्थित होंगे हम प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। दिन में 12:10 पर रहेगा नाटक कर्ज और फर्ज, लेखिका होंगी श्रीमती उषा किरण सोनी। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर सुन सकेंगी। चर्चाएं रहेंगी अमृतमय माँ का दूध, विश्व दुग्ध दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, अभिभावकों का सानिध्य,

थाली में संपूर्ण पोषण निरम संजीव रेड्डी पुण्यतिथि। साथ ही साथ कार्यक्रम में होगी वार्ता संस्कारों और जीवन मूल्यों की पहली पाठशाला माता पिता। वार्ताकार होंगे श्रीमती रेखा पाईवाल। प्रस्तुति रहेगी श्रीमती बरखा धामी व्यास की। संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। हमारी दूसरी सभा की प्रारंभ में युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 5:05 पर। कार्यक्रम में युवा साथी आज की बात सुनेंगे, गर्मी के मौसम में रखें सेहत का ख्याल। लघु जानकारियां होंगी कोणार्क मंदिर, रेडक्रॉस, विश्व दुग्ध दिवस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप शाम 6:05 पर उठाएंगे, जिसमें आप सुनेंगे एक ही गीतकार गीत। साथ ही साथ शाम 7:00 का समय रहेगा ग्रामीण जगत का। चर्चाएं होंगी जून माह के कृषि बागवानी और पशुपालन संबंधी कार्य, नौतपा में पशुओं की देखभाल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, विलायती बबूल से पर्यावरण को नुकसान जैसे विषयों पर।

मिनट पर उठाएंगे, जिसमें आप सुनेंगे एक ही गीतकार गीत। साथ ही साथ शाम 7 बजे का समय रहेगा ग्रामीण जगत का। चर्चाएं होंगी जून माह के कृषि बागवानी और पशुपालन संबंधी कार्य, नौतपा में पशुओं की देखभाल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, विलायती बबूल से पर्यावरण को नुकसान जैसे विषयों पर। रात्रि 7:45 का समय रहेगा सुगम संगीत का। रात्रि 8 बजे आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। रात्रि 9:15 का समय भी फिल्म संगीत का रहेगा और रात्रि 9:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सुन सकेंगे। रात्रि 7:45 के बाद रात्रि 10:30 होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 10:30 कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजलें। आकाशवाणी जयपुर से रात्रि 10:00 रिले किया जाएगा कार्यक्रम खेल जगत।

0: ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:45 हो रहे हैं। समय है किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेती की बातें का। कृषि में कीटनाशकों का उपयोग, पशुधन और मनुष्य पर प्रभाव विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री दीवान दान रत्नू।
1: किसान भैया राम राम। आपका देश एक कृषि प्रधान देश है, जिकरी लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी उड़ी रही है। हरित क्रांति सु अपन देश अंग उत्पादन में आत्मनिर्भर जरूर हो गया है, पर कीटनाशकों अत्यधिक उपयोग सु कीटनाशकों अवशेष भूमि पशुआरे चारा और अपारे फल सब्जिया ने माय रह जावे, जिन्हों कुप्रभाव या इनरो दुष्परिणाम अपने पशुआ और मनुष्य ने माय देखने मिले और उन्हों कैंसर जड़ी घातक बीमारियां अपने सामने आवे। किसान भैया, जे अपा कीटनाशक और उनरो दुष्प्रभाव माथे जे डला तो कृषि कार्यो में कीट चूहा जीवाणु और फफूंद आदि ने नियंत्रित करवा और मान खाते निम्नलिखित कीटनाशक का प्रयोग अपा लगभग करता रहा हां और इनारो असर भी अपने शरीर माते इन प्रकार पड़े। देखो सा किसान भाई, कीटनाशक है ऑर्गेनोफॉस्फेट, जे ई मात बात करा तो ओ कीटनाशक अपारे और अपारे पशुआरे तंत्रिका तंत्र पर घातक प्रभाव डाले और एसिटाइल कोलिन और न्यूटो ट्रांसमीटर ने नियंत्रण करने वाला एंजाइम तंत्र ने नष्ट कर देवे। उदाहरण डाइजिनोन, मेलाथियोन, कोनोफॉस इत्यादि रसायन इनारी उपज है। कार्बोनेट कीटनाशी किसान भैया रो कीटनाशी रो तंत्रिका तंत्र और एंजाइम तंत्र ने प्रभावित करे। कार्बोनेट कीटनाशी और रसायन डाइजिनोन, मेलाथियोन, कोनोफेस इत्यादि माया मिले। और किसान भैया, इन प्रकार घातक कीटनाशी में आर्गोनो क्लोरिन कीटनाशी रिमाए अपना डीडीटी, क्लोरडेन, एल्ड्रिन, हेपोटाइक्लोरिन काम में लेवा। और किसान भैया, पाइथो राइड कीटनाशी और भी अपना पाइरोथ्रीन तत्व का अपने शरीर में तंत्रिका तंत्र ने जहरीलो बना देवे। एंड इन रसायन में डेल्टा मैथ्रीन, साइपर मैथ्रीन और पर मैथ्रीन इत्यादि मिलुड़ावे। किसान भैया, इन प्रकार आप देखा कि घातक रासायनिक जिका अपने शरीर ने तंत्रिका तंत्र ने नष्ट कर रहा है। आखिर देश माथे इन प्रभाव देखा तो किसान भैया, भारत एशिया पूर्व में कीटनाशक उत्पादन करने वालों दूसरो देश है और उपयोग लेवा में 12वां स्थान है। कृषि में उपयोग लेने वाला कीटनाशक और इनरा अवशेष माथे पशुआरे चारा और मनुष्य भोजन माए रह जावे और कीटनाशक अपने खाद्य श्रृंखला द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कर लेवे। लगभग सगला कीटनाशक अपने और पशुआरे तंत्रिका तंत्र माथे घातक प्रभाव डाले। तंत्रिका तंत्र जहरीले प्रभाव से अपा और पशुओं में कई रोग पैदा कर देवे, जहाँ चिड़चिड़ापन है, याददाश्त में कमी है, मनुष्य लड़खड़ाणु है, दिल रो दौरो है, पक्षाघात जड़ी घातक बीमारियां कीटनाशक रासायन प्रयोग से होते रहे। किसान भाई, इनके प्रभाव से शरीर रे प्रतिरक्षा तंत्र माथे भी बड़ो उल्टो असर करे। आर्गेनो क्लोरिन जिको रासायन है उनरो उत्पाद प्रतिरक्षा तंत्र में अधिक प्रभाव डाले। साथ साथ पशुओं में कदी कदी टीकाकरण अप्रभावी हो जावे। कीटनाशक उपापचय

0: यकृत में हुए इंसुली यकृत माते घाव और यकृत माते उल्टो असर देखने मिले। अठे तक कीटनाशी रे प्रयोग सु कैंसर जड़ी घातक बीमारियां भी वही जेवे। इनो ताजो उदाहरण देखो सा किसान भैया, राजस्थान और पंजाब प्रांत रे कुछ एक जिला में ज्यादा मिले, जिके जिला रे माया कीटनाशक का रो प्रयोग अंधाधुंध रे प्रयोग होने से बठे कैंसर री बीमारियां या कैंसर मरीज भी ज्यादा देखने मिले। किसान भैया, देश रे विभिन्न भागा में जांच पश्चात औषध हुयो है कि दूध और दूध बनेड़ा जिकी भी चीज है उनमें आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशी अवशेष मिलेड़ा मिले, जिका लोग मांस खावण रा शौकीन है या मांस खाए जिकी देश प्रांत में उनारो और उन अधिक चिंता री बात आ है कि सबसे ज्यादा रसायन मुर्गे रे मांस रे में मिले। इन्हें पश्चात बकरे रे मांस में भी आर्गेनोक्लोरीन घातक रसायन पायो जावे और आर्गेनोक्लोरीन रासायन पदार्थ डीडीटी क्लोरोडेन एल्ड्रिन इत्यादि रसायन में उपलब्ध हुए। किसान भैया, कीटनाशी रे पशुओं में ज्यादा प्रयोग सु इनारो प्रजनन तंत्र अप्रभावी हो जावे, प्रजनन तंत्र माते भारी घातक प्रभाव पड़े और कुछ एक उपाय किसान भैया अपा कीटनाशक रसायन रो प्रयोग और कुप्रभाव कम जरूर कर सका। जिया समन्वित कीट प्रबंधन, मित्र कीट या कीट पक्षी पक्षियों द्वारा बढ़ाओ देर कार्बनिक खेती में बढ़ाओ देर भी अपा इनरो असर कम कर सका। किसान भाई, जैव विघटित कीटनाशी रे प्रयोग रे काम नियन पा भी अपा रासायनिक पदार्थ रो प्रयोग भी की कम कर सका और साथ साथ रासायनिक कीटनाशी रो प्रयोग कम से कम अपा कृषि कार्य में लेवा तो उनरो भी असर कीटनाशक रासायन प्रयोग में कम हो सके।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए पुष्पा सैनी का गाया लोक भजन।

0: आप सुन रहे थे पुष्पा सैनी का गाया लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातःकाल के 6:55 होने को हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य संपूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रकृति संरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणाम् उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। 35 नूतनाः मंत्रिणः मंत्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः 11 लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य 9 दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज 1 जून है और पूरा विश्व अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मना रहा है। जी हाँ, वैश्विक अभिभावक दिवस परिवारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है और स्नेहपूर्ण खेल खेल में पालन पोषण के निवेश के महत्व को भी बतलाता है। विश्व भर के सभी माता पिताओं के प्रति ये दिन आभार व्यक्त करता है। 1980 के दशक से परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में ध्यान खींचती आई है। महासभा ने कई प्रस्तावों को अपनाया और परिवार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और परिवार दिवस की घोषणा की। बच्चों के लालन पोषण में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए वैश्विक अभिभावक दिवस इस बात को मान्यता देता है कि बच्चों के पालन पोषण और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी परिवार ही की है। बच्चों के संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें पारिवारिक वातावरण में और सुख प्रेम और समझ के माहौल में पलना बढ़ना चाहिए। वर्ष 2012 में महासभा द्वारा नामित वैश्विक अभिभावक दिवस सभी अभिभावकों को बच्चों के प्रति उनके निस्वार्थ प्रतिबद्धता और रिश्ते को पोषित करने के लिए उनके आजीवन बलिदान के लिए सराहना करने का अवसर भी देता है। जी हाँ श्रोताओं, बच्चों के कल्याण और विकास में परिवार, माता पिता, देखभालकर्ता केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वो बच्चों और किशोरों को पहचान, प्यार, देखभाल, पोषण और संरक्षण के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता भी प्रदान करते हैं। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की भावना के अनुरूप परिवार और पालन पोषण संबंधी सहायता को राष्ट्रीय सामाजिक नीतियों और सामाजिक निवेश पैकेजों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में तेजी से रिकॉग्निशन दी जा रही है। श्रोताओं, मान्यता इसे प्राप्त होती जा रही है, जिनका उद्देश्य गरीबी को कम करना, असमानता को घटाना और माता पिता और बच्चों के सकारात्मक कल्याण को बढ़ावा देना है। इस साल यानी 2026 में

ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम माता पिता के लिए एक साथ रखी गई है। जी हां, यूनिसेफ 1 जून को माता पिता के लिए एक साथ विषय के तहत वैश्विक अभिभावक दिवस का शुभारंभ करेगा, यानी आज के दिन। इस कार्यक्रम में माता पिता बनना और माता पिता बनने की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना जैसे विषयों पर जानकारियों को साझा किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि किसी भी परिवार के कल्याण के लिए माता पिता समर्थ हों, सक्षम हों। जब पेरेंट्स यानी अभिभावक यानी माता पिता मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं, समर्थ होते हैं, तो बच्चों के कल्याण के लिए वो अधिक उचित तरीके से प्रबंध कर पाते हैं और इसी से ही नई पीढ़ी मजबूत होती है। कभी कभी परिस्थितियां अभिभावकों को एकल अभिभावक के रूप में भी देखनी पड़ती हैं, उनके सामने आती हैं। लेकिन अगर एकल अभिभावक के रूप में भी माता पिता में से कोई एक भी अगर बच्चों का लालन पोषण कर रहा है, उन्हें पाल रहा है और अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग इस दिशा में कर रहा है, तो यकीनन वो बच्चों को अच्छे तरीके से परवरिश दे सकता है। बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिले, दोनों अभिभावकों का स्नेह मिले, यही सबसे उचित तरीका होता है। लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अभिभावक पहचाने, माता पिता अपनी अपनी जिम्मेदारियों को आपस में बांटें, तो बच्चों का और अच्छी तरीके से पालन पोषण किया जा सकता है। तो कार्यक्रम में हमारी बात को पूरा करता हुआ ये गीत आइए सुनते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: श्रोताओं, आज 1 जून है और हर साल आज ही के दिन 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व दुग्ध दिवस, जिसका उद्देश्य दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध शरीर को पोषण देने के अलावा करोड़ों लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। बच्चों की बढ़ती उम्र से लेकर बुजुर्गों की सेहत तक दूध हर आयु वर्ग के लोगों की दैनिक जरूरतों का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि इसके महत्व को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और डेयरी क्षेत्र के योगदान को सम्मान देने के लिए आज के दिन वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आज के दिन लोगों को दूध के महत्व के बारे में जागरूक करने का एक वैश्विक अभियान चलाया जाता है। दूध एक पौष्टिक आहार है जो दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर के विकास और

प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यही वजह है कि दूध बच्चों से लेकर बड़ों सभी के लिए फायदेमंद माना जाता है। हर साल आज के दिन यानी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा, दूध और डेयरी उद्योग के योगदानों को पहचान देना और लोगों को इनके महत्व के बारे में जागरूक करना है। दूध या डेयरी क्षेत्र न केवल शरीर के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये क्षेत्र कृषि, रोजगार और आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रोताओं, अगर आज के दिन के इतिहास की बात करें तो आज के दिन को मनाने की शुरुआत साल 2001 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की थी। तब से लेकर हर साल 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस को मनाते हैं। इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को दूध से होने वाले फायदों के बारे में बताना भी है। ये दिन सिर्फ दूध के फायदों के ही बारे में बात नहीं करता, बल्कि इसके जरिए आम लोगों को ये भी बताया जाता है कि दूध स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को भी फायदा पहुंचाता है। इस साल यानी 2026 को विश्व दुग्ध दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसके जरिए दुनिया भर के लोगों को वर्ल्ड मिल्क डे के लिए जागरूक किया जाएगा। इस साल की थीम सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स रखी गई है। इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान देना है। दुनिया के कई देशों में महिलाएं पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, डेयरी प्रबंधन और परिवार के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये थीम कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को पहचान देने का संदेश देती है। श्रोताओं, हम सभी को मालूम है कि दूध के बहुत फायदे हैं, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन डी और B12 जैसे जरूरी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ शरीर के विकास और मांसपेशियों की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो श्रोताओं, दूध का सेवन अपनी आदत बना लें, और किसी भी आदत को आदत बनाने का सबसे सही समय सुबह का समय होता है। सुबह सुबह जिस काम को हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं वो धीरे धीरे हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। तो सुबह अगर हम दूध का सेवन करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने नित्य क्रमों के प्रति सावधान रहेंगे, साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, तो फिर हमारी हर सुबह सुहानी होगी, खूबसूरत होगी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आज भारतवर्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी पुण्यतिथि भी मना रहा है। जी हाँ, आप एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। आपने 1977 से लेकर 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ एक लंबे राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए आप आगे बढ़ते गए। भारतीय राष्ट्रपति बनने से पहले स्वतंत्र भारत में आंध्र राज्य के उप मुख्यमंत्री और संयुक्त आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष और एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कई प्रमुख कार्यालय आपने संभाले। जी हाँ श्रोताओं, नीलम संजीव रेड्डी का जन्म सन 1913 में 19 मई को हुआ और आज ही के दिन 1 जून 1996 को आप हमें अलविदा कह गए। आप भारत के छठे राष्ट्रपति थे। आपका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा। आप आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे। नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में भी की जाती है। आपका सार्वजनिक जीवन उत्कृष्ट था। आपने भारत को एक ऐसा व्यक्तित्व दिया जिसके बारे में बात करते समय हम सभी विरोधाभासों से मुक्त होते हैं। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह भी किया।

उन्होंने युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 20 साल की उम्र से ही नीलम संजीव रेड्डी काफी सक्रिय थे। सन 1936 में नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए और लगभग 10 सालों तक आपने वहां कार्य किया। अगर आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो थियोसोफिकल हाई स्कूल अंजियार मद्रास में आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसी विद्यालय में रेड्डी आध्यात्म की ओर भी आकर्षित हुए और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अनंतपुरम में प्रवेश लिया। लेकिन जुलाई 1929 में गांधी जी से मिलने के बाद रेड्डी जी का पूरा जीवन बदल गया और भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। जी हां श्रोताओं, आपके पिता नीलम चिन्नप्पा रेड्डी थे। आपके पिता के एक पुत्र और तीन पुत्रियां हुई। नीलम संजीव रेड्डी के पुत्र सुधीर रेड्डी अनंतपुरम में सर्जन की हैसियत से अपना स्वतंत्र फ्रीडम पार्टी ऑफ इंडिया के प्रभावशाली नेता रहे और आजादी की लड़ाई में भी कई बार शामिल हुए। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी का त्याग करके स्वाधीनता संग्राम में जुड़ रहे थे, तभी नीलम संजीव रेड्डी मात्र 18 साल की उम्र में ही इस आंदोलन का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। संजीव रेड्डी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। ये उस समय आकर्षण का केंद्र बने जब उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही सत्याग्रह किया। वो युवा कांग्रेस के सदस्य भी थे, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा। उन्होंने कई राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में भी हिस्सेदारी ली। तो कुल मिला के भारत के ऐसे अग्रणीय व्यक्तित्व थे नीलम संजीव रेड्डी, जिनके व्यक्तित्व से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भारत ऐसी महान शख्सियतों से भरा है, बस जरूरत यह है कि हम इन महान व्यक्तित्वों को याद करें, अपने बच्चों को समझाएं, बताएं, ताकि भारत के गौरवशाली इतिहास को हम सदैव स्मरण रख सकें। तो चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं ये अंतिम गीत।

तो श्रोताओं, हम अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठ रहेंगे और देश प्रेम हमारे दिल में हमेशा रहेगा, इसी इरादे के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दें आज्ञा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए बात एक रात की फिल्म से, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में पहला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है SD बर्मन का।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी बीकानेर की ढूला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए, जिसे संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है बदतमीज और आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। आवाज फिर सुमन कल्याणपुर की है, खयाम का है संगीत। फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को फिल्म पालकी से। शकील बदायूनी हैं गीतकार, संगीतकार हैं नौशाद।

0: बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
4: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
5: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसान

0: को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में

0: तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन।

मेरी पहली कविता मेरे सितारे। जिंदगी की डगर कठिन जरूर है मगर कठिनाइयों से उबरना कोई हमसे सीखे। जिंदगी की डगर कठिन जरूर है मगर कठिनाइयों से उबरना कोई हमसे सीखे। माना कि जिम्मेदारियां बहुत है मगर अपने शौक जिंदा रखना कोई हमसे सीखे। सुख दुख है जीवन के रंग मगर जीवन के हर रंग को अपनाना कोई हमसे सीखे। सुख दुख है जीवन के रंग मगर जीवन के हर रंग को अपनाना कोई हमसे सीखे। नहीं बनना किसी की दया का पात्र जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना कोई हमसे सीखे। जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना कोई हमसे सीखे। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ नए आयाम स्थापित करना कोई हमसे सीखे। सितारा तो तुम पहले भी थी मगर अपने आप को तराशना कोई हमसे सीखे। पेश है आपके सामने मेरी दूसरी कविता तू हर हाल डटकर चली। सपना जो देखा तूने साकार किया, मुश्किलें जो आईं पलटवार किया, दूभर राहों पर तू अकेली चली, तू हर हाल डटकर चली, तू लीक से हटकर चली, असफलता को स्वीकार किया, कमी रही जो सुधार किया, गिरते पड़ते संभल कर चली, तू हर हाल डटकर चली, तू लीक से हटकर चली, संघर्षों का मैदान न छोड़ा, काबिलियत से मुंह न मोड़ा, पीठ पर लाद हौसला तू बढ़ती चली, तू हर हाल डटकर चली, तू लीक से हटकर चली, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, अर्जुन सा लक्ष्य बहुत खास, तू निरंतर बढ़ती चली, तू हर हाल डटकर चली, तू लीक से हटकर चली, देखेगा जमाना तेरी उड़ान, उड़ने को है सारा आसमान, तू भय से लड़ना सीखती चली, तू हर हाल डटकर चली, तू लीक से हटकर चली, खत्म हुआ सब्र का इम्तिहान, बनाया तूने एक खास मुकाम, कदमों के निशान तू छोड़ती चली, तू हर हाल डटकर चली, तू लीक से हटकर चली। अब पेश है मेरा एक

0: सागर। अब आपके सामने प्रस्तुत है मेरी चौथी कविता, तू कमाल कर। आईने में खड़ा शख्स कह रहा है तुझसे, आईने में खड़ा शख्स कह रहा है तुझसे, जरा सुन बेवजह अपनी परवाज पर ना यूं सवाल कर। बेवजह अपनी परवाज पर ना यूं सवाल कर, कुछ मन की कर ले जो मन करे, कुछ मन की कर ले जो मन करे, इस मन चले मन का भी कुछ ख्याल कर। तूफानों से प्यार कर लेकर लहरों से स्वर, तूफानों से प्यार कर लेकर लहरों से स्वर, जिंदगी के संगीत में अपनी एक ताल कर, जिंदगी के संगीत में अपनी एक ताल कर। डर के उस पार है तेरी मंजिलें, डर के उस पार है तेरी मंजिलें, डर को डराने को साहस की एक ढाल कर, डर को डराने को साहस की एक ढाल कर। हारना और जीतना है मंजर आखिरी, हारना और जीतना है मंजर आखिरी, कुछ करने की ठान कर तू बस कमाल कर, कुछ करने की ठान कर। अब आपके सामने प्रस्तुत है मेरी एक कविता, आभास। मैं धरती मैं बादल मैं पानी मैं आकाश भी, मैं धरती मैं बादल मैं पानी मैं आकाश भी, मैं आज मैं ही कल है मुझ में समाया, मैं आज मैं ही कल मुझ में समाया है इतिहास भी। मैं निडर आत्मविश्वासी हिम्मत का ओढ़ू लिबास भी, मैं हिम्मत मैं निडर आत्मविश्वासी हिम्मत का ओढ़ू लिबास भी, जड़ों से जुड़कर पंख फैलाऊं अपने करू नए का, जड़ों से जुड़कर पंख फैलाऊं अपने करू नए का अभ्यास भी। जय के रंगों का जश्न भी मुझ में, जय के रंगों का जश्न भी मुझ में, मेरी सभ्यता संस्कृति का निवास भी। जय के रंगों का जश्न भी मुझ में, मेरी सभ्यता संस्कृति का निवास भी। माथे पर बांधा साहस को, माथे पर बांधा साहस को, है चेहरे पर दृढ़ विश्वास भी, है चेहरे पर दृढ़ विश्वास भी। हौसले का हार गले में होठों पर एक आस भी, हौसले का हार गले में होठों पर एक आस भी। आंखों में समेटे भाव कई है चेहरे पर उजास भी, आंखों में समेटे भाव कई है चेहरे पर उजास।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आपने सुना काव्य पाठ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए देशभक्ति सहगान।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी जयपुर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। समाचार तरंग के लिए इंतजार करें।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। मैं हूं आपके साथ सालेहा। स्वीकार कीजिए मेरा अभिवादन।

0: हमारा देश भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। और जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के किले, महल, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हमारी गौरवशाली परंपरा के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। इन्हीं धरोहरों के संरक्षण और इनके संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण योजनाएं और पहलें संचालित की जा रही हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी से। मनीष जी, आकाशवाणी स्टूडियो पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: नमस्कार श्रोताओं।
0: मनीष जी, राजस्थान जो है विरासत की दृष्टि से बात करें तो बहुत ही समृद्ध राज्य माना जाता है और केंद्र सरकार यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, स्मारक हैं, उनके संरक्षण में किस प्रकार का विजन लेकर काम कर रही है?
1: देखिए, राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल है कि जहाँ पे टूरिज्म प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो शायद एक समंदर नहीं है। बाकी सब चीजें जो एक पर्यटक को चाहिए देखने के लिए, वो चाहे रेगिस्तान हो, चाहे झीले हो, चाहे नदियां हो,
0: किले हो,
1: चाहे
0: प्राचीन मंदिर
1: हो, चाहे ग्रामीण जीवन का अनुभव लेना हो, चाहे हवेलियां हो, वो सब कुछ जो एक विदेशी पर्यटक या देशी पर्यटक कोई भी देखना चाहता है वो राजस्थान में मिल जाता है। उस दृष्टि से राजस्थान देश के पर्यटन नक्शे में बहुत बड़ा स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अजमेर जैसे अभी प्रसाद योजना में शामिल है, जयपुर का जो परकोटा शहर है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। जयपुर में ही जो है जंतर मंतर और इस तरह के जो स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को की।
0: झालावाड़ में चाहे गागरौन का किला है, चित्तौड़गढ़ है, ये सभी
1: चीजें विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो राजस्थान उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अच्छी बात यह भी है कि जो पर्यटन मंत्री हैं देश के वो भी राजस्थान से जाते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अलग अलग योजनाओं में, प्रसाद योजना हो, चाहे हृदय योजना हो, चाहे पर्यटन सर्किट्स, क्योंकि जयपुर आप देखिए कि जयपुर एक उस गोल्डन ट्रायंगल पे है, जयपुर आगरा और दिल्ली को मिलाकर के एक ट्रायंगल जो बनता है उसका एक यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा पर्यटन मतलब धार्मिक सर्किट के इतिहास से भी देखा जाए तो राजस्थान के जितना भी ये जो आपका खाटू श्याम जी का इलाका है, सालासर बालाजी है, उसके अलावा बाकी जो आसपास के धार्मिक स्थल हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुष्कर है, पुष्कर को जो है विश्व मतलब देश में सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। पुष्कर के साथ अजमेर में दरगाह है, तो वो एक बहुत पूरा एक ऐसा बुके है अपने आप में कि जो एक पर्यटक को धार्मिक अनुभव भी देता है यदि वो धार्मिक स्थल पे धार्मिक यात्रा के हिसाब से आना चाहता है, और यदि वो मतलब घूमने के लिहाज से आना चाहता है तो उसकी दृष्टि से भी बहुत अच्छा अनुभव राजस्थान में पर्यटकों को और जो भी विदेश से जो लोग आना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा।
0: सर, अभी आपने जिक्र किया प्रसाद योजना का, तो आपको क्या लगता है कि इसके माध्यम से धार्मिक स्थलों के संरक्षण में हमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है?
1: इसमें एक सरकार ने एक जो बहुत बड़ा काम किया है, जो भी इस तरह के धार्मिक स्थल थे जैसे पटना साहिब हो गया, कामाख्या मंदिर हो गया, इस तरह के जो पर्यटन स्थल थे उनके आसपास जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, होना चाहिए, जो कि जो एक पर्यटक के लिए बहुत जरूरी है, जो वहां पे लोग आ रहे हैं उनके लिए एक इजी पहुंच हो जाए, वहां पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना रहे, उनके स्टे की कोई दिक्कतें ना रहे, उसको लेकर के पूरा एक सारी योजना इसको लेकर के चलाई गई है और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी दिख रहा है। जो अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए गए, जैसे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, महाकाल में जो इस तरह का कॉरिडोर बना है, कामाख्या मंदिर में कॉरिडोर बन रहा है, पुष्कर के लिए इसी तरह की बात चल रही है कि यहाँ भी इस तरह का एक पूरा विकसित किया जाएगा। तो इस तरह से वहां पे अब तक जो दिक्कतें आ रही थी, अतिक्रमण की वजह से दिक्कतें थी या और दूसरी वजहों से दिक्कत थी कि लोग आते थे, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, और आप देखिए कि जितना भी जो हरिद्वार से ऊपर का इलाका है वहां की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर बना दी गई है पहले के मुकाबले। जितना भी मतलब आप चाहे चार धाम की यात्रा करने जाएंगे तो पहले जितना समय लगता था उसके मुकाबले उसको बहुत कम समय कर दिया गया है, वहां पे सड़कें बहुत बेहतर बना दी गई हैं। तो ये जो पूरा काम हो रहा है प्रसाद योजना के तहत अलग अलग सेगमेंट में, उसके तहत लोगों को मतलब एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी मिली है और जो उनका आने जाने का समय है वो भी बहुत बचा है, और वहां पे जो ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, जो स्टे की व्यवस्थाएं हैं वो भी पहले के मुकाबले काफी बेटर।
0: यानी ये जो धार्मिक हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं और विरासत स्थल हैं उन तक लोगों की पहुंच को सुगम किया गया है, लोगों के लिए उन वहां पर

0: सुविधाओं को और बेहतर बनाया गया है। अगर हम बात करें हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी हृदय की, तो इसके तहत राजस्थान में कौन कौन से काम किए गए हैं?
1: देखिए, राजस्थान में मुख्य तौर पर अजमेर को इस योजना में शामिल किया गया था, और अजमेर में चूंकि दो बड़े धार्मिक स्थल हैं, एक तो पुष्कर है और दरगाह है, तो जिनमें कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो वहां पे इस तरह का काम, उसके डेवलपमेंट का काम इसके तहत चल रहा है, हृदय योजना के तहत। और उसके अलावा देश के बाकी जो शहर हैं उनमें भी जो है, जैसे अमरावती है वहां पे इसको चुना गया है, द्वारका है गुजरात में उसको चुना गया है, गया है बिहार में, ये सब शहर हैं, एक वाराणसी है, बनारस जो कि खुद प्रधानमंत्री जी का
0: निर्वाचन
1: क्षेत्र भी है, मथुरा है, तो ये पुरी है उड़ीसा में। धार्मिक महत्व के जो ये जितने भी शहर हैं उनमें सरकार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है, वहां पर उन जो है वहां पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सैनिटेशन का प्रॉब्लम है वहां पे, पानी की दिक्कत है या सड़कें हैं या स्वच्छता की बात है, उन सारी चीजों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और जैसे अजमेर में है लगभग काफी काम इसके तहत हो रहा है, पुष्कर को डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहां पे पुष्कर कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, दरगाह स्थल के आसपास भी इस तरह का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक काफी एक अलग उद्देश्य के साथ शुरू की गई योजना है।
0: मनीष जी, अगर हम देखें पुराने स्थलों को, तो तब से अब तक चाहे शहरीकरण हो चाहे आबादी का बढ़ना हो, बहुत से ऐसे कारण रहे हैं कि ये स्मारक जो है अतिक्रमण से भी घिर गए हैं, और आबादी बढ़ने के साथ ही ये उनका जो उन तक पहुंच है वो इतनी आसान नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के लिए या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के लिए भी ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में आमतौर पर किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं?
1: सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण वाली, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले जब ये जिस जमाने में कभी धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल बनाए गए होंगे तब आबादी इतनी नहीं थी, पर धीरे धीरे समय के चक्र में चलते चलते आप लंबे समय तक, तो वहां पर आसपास बहुत अतिक्रमण भी हो जाता है, व्यापार एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था वहां पर डेवलप होती है, उन सब को हटाना, विस्थापित करना और बेहतर उसको बनाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ये चीज हमने काशी में भी देखी, वहां भी जब जिस तरह की जब हटाए गए थे लोगों को तो बड़ा एक विरोध भी सामने आया था, उतना आसान नहीं था, या अयोध्या में भी हुआ, बहुत दिक्कतें आई वहां पे भी, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। अल्टीमेटली फायदा वहां के लोगों को होता है, क्योंकि जब वो एक बेटर एक प्लेस बन जाएगा, वहां पे व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी, तो नेचुरल लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे वहां पे,
0: और आर्थिक गतिविधियों को भी
1: बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एक बार को बहुत डीस्टैब्लिश होते हैं, मतलब
0: फॉर अ टाइम बीइंग उन्हें थोड़ी परेशानी
1: दिक्कत होती है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को इसके बारे में समझाना, क्योंकि लोग बरसों से वहां पर टिके हुए हैं, रहे हैं, उनको हटा करके दूसरी जगह यदि ले जा रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत का काम होता है, तो ये एक चुनौती है इसमें निश्चित रूप से। दूसरी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो उसका स्वरूप है, मूल स्वरूप उस जगह का, उसका बनाए रखना, उसको बनाए रखना, कि वो जिस उद्देश्य से बनाया गया किसी जमाने में हमारे फोर फादर्स ने, जब भी हमारी पूर्वजों ने जो उसको इसको बनाया, वो अपने मूल स्वरूप में बनी रहे, उसका जो अतिशय है, उसका जो एक जिसको कहते हैं कि आप उसको चमत्कार से जोड़ लीजिए या किसी भी तरह से जोड़ लीजिए, वो एक बना रहे उसका, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ASI अच्छा काम करती है उसको मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए, पर उसके साथ साथ उसमें उसकी मरम्मत की जरूरत भी होती है, उसकी देखभाल की जरूरत भी होती है, पर वो इस ढंग से हो कि उसका मूल स्वरूप नष्ट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो देखने आ रहे हैं लोग वो उसकी प्राचीनता देखने के लिए आ रहे हैं, उसको मतलब वो देखने नहीं आ रहे कि वहां पे आपने क्या नया बना दिया, नया कंस्ट्रक्शन देखने नहीं आता, जो भी आ रहा है वो देखने के लिए आ रहा है कि उस जमाने में क्या बनाया गया, तो उसको उसी स्वरूप में बनाए रखना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।
0: सर, अगर राजस्थान के परिदृश्य की बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल राजस्थान में कई हैं, 8 यहाँ पर इस तरह की धरोहर हैं, तो उनके संरक्षण के लिए सरकार की ओर से क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
1: देखिए, इसमें यूनेस्को के कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पे ही यूनेस्को उसको विश्व धरोहर सूची में लेता है, जैसे जंतर मंतर है हमारे यहाँ से, या मान लीजिए जयपुर के परकोटा शहर को उन्होंने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में लिया है, तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी
0: जी,
1: कि आप जो इसका जो मूल स्वरूप है वो बनाए रखेंगे, जो इसका जैसे मान लीजिए जो परकोटे का बाजार है उसका फसाड़ जो है वो आप उसी स्वरूप में रहना चाहिए, उसी कलर में होना चाहिए, तो इस तरह के बहुत सारे मामले, और वो स्थल के हिसाब से होता है कि जो जो भी स्थल है उसकी जो प्राचीनता है, उसका जो

0: एक जो पुराना स्वरूप था वो उसको मेंटेन आप रखेंगे, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे उसके पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे वो लोग किसी भी स्थल के लिए उसको सूची में शामिल भी करते हैं और उसका रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते हैं। जैसे अभी भी जयपुर शहर के लिए भी इस तरह की बात आई थी कि जयपुर शहर देखने के लिए मतलब वो
1: जो यूनेस्को की कमेटी ही उनका जायजा लेती है,
0: वो आके देखती है कि किस तरह का हम जो चीज सोच के गए थे वो हुई कि नहीं हुई, अब तक जो काम हम बता के गए थे वो उस तरह से हुए कि नहीं, तो एक वो पूरा चलता है। तो वो हमारे जितने भी स्थल हैं इस तरह के उनको रेगुलर वो मॉनिटरिंग उसके यूनेस्को की जो कमेटी है उसके अंडर में रहते हैं, वो समय समय पर उसको आके देखती भी है। और ये ऐसे ही की जिम्मेदारी होती है और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो जिन शर्तों के आधार पे वो बनाया गया, उसको जो धरोहर सूची में रखा गया वो बना रहे।
1: सर अगर हम तकनीक की बात करें तो आजकल हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, तो अगर हम संग्रहालयों या और स्थलों की बात करें तो उनके भी नेचुरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल टूर भी अवेलेबल हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि तकनीक का इस क्षेत्र में कितना उपयोग हो पा रहा है?
0: ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो तकनीक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यदि आप इसमें तकनीक ने जितना बड़ा रोल प्ले किया है उतना शायद मुझे नहीं लगता कि किसी सेक्टर में और में किया होगा, क्योंकि ब्लॉगर्स के जरिए, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी ऐसी चीजें हम आज देख पा रहे हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं थे, जो कहीं दुबी छुपी थी, वहां पे नए लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी वीडियोज डाल रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि बहुत सारे लोग मतलब वॉलंटरली ये बताते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं, यहाँ पर आप क्या ध्यान रखें। ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये अल्टीमेटली उन स्थलों को फायदा कर रही हैं।
1: जो हमारा निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है और स्थानीय समुदाय की भी इसमें बड़ी भूमिका है, तो उसे भी कैसे तय किया जा सकता है?
0: केंद्र सरकार ने एक अडॉप्ट मॉन्यूमेंट एक स्कीम शुरू की हुई थी, उसमें शायद अभी तक 21 के आसपास MOUs हुए हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर एक मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करता है, उसका सारा देखभाल उसमें करता है। तो देश भर में करीबन अभी शायद 21 के आसपास उस में MOUs सरकार के साथ हुए हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ सरकार नहीं प्राइवेट जो लोग हैं वो भी उस मॉन्यूमेंट को देखें और संभालें। इसके अलावा स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका इसीलिए होती है कि जो भी इस तरह के स्थल हैं वो अल्टीमेटली वहाँ की इकोनॉमी को बहुत इंपैक्ट करते हैं, लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों की वहाँ की जो आजीविका है उसको बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं, तो उनकी सहायता मिलना वो उसको बना करके रखें। जैसे उदयपुर के लोगों ने अपने शहर को बहुत अच्छे ढंग से संजो के रखा हुआ है, तो इस तरह का एक इनिशिएटिव मुझे लगता है कि पूरे देश में अलग अलग समुदायों में होना चाहिए, अलग अलग शहरों में होना चाहिए, कि जो वहाँ के लोग हैं वो उसको बहुत अच्छे ढंग से संभाल के रखें ताकि वो उनको भी फायदा दे और देश को तो फायदा दे।
1: मनीष जी, विरासत संरक्षण के कामों पर ये सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन अंत में हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आम नागरिक या स्थानीय समुदाय या युवा वर्ग किस तरीके से अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर सकता है, इन सब श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
0: देखिए, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि आपका शहर, आपकी जो भी विरासत है उसको यदि संभाल के नहीं रखेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी जड़ें हैं, तो जड़ें जब तक नहीं सींचेंगे तब तक पेड़ बड़ा नहीं हो सकता, तो इसको संभाल के रखिए, इसको संजो के रखिए, इसको देखने लोग आएंगे तो वो आपको भी फायदा देंगे और आपकी खुद की जो एक सांस्कृतिक पहचान है जो देश की वो बनी रहेगी, कम से कम खुद की पहचान बनाए रखने के लिए इस विरासत को संभाल के रखिए।
1: मनीष जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, वाकई जो हमारी धरोहर है वो केवल अतीत की पहचान नहीं है बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी तय करती है, इनका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग रहा सुदर्शन नाहर, तकनीकी सहयोग सुप्रियो बैनर्जी, संपादन रितिका गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आकाशवाणी जयपुर से कुछ क्षणों में अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए कुछ देर इंतजार करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी, इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी, 4 जून तक

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
1: अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही है। इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट शामिल है। राजस्थान में 3 सदस्यों, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 1 आरए सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया है। वहीं 332 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। साथ ही 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन भी बंद की गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। इस साल 56,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस में पहला स्थान हासिल किया है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम बनाई है। बोर्ड ने कहा कि वह पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिससे हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वे राजस्थान और दिल्ली के जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि 10 दिन का ये चिंतन शिविर पुष्कर में आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। लगातार पिछले 2 दिनों से आंधी बारिश के दौर से तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। नागौर में तड़के 4 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। बारा और भीलवाड़ा में भी अलसुबह हल्की बारिश हुई। वहीं कल जैसलमेर में रेत का बवंडर उठा और दिन के समय ही अंधेरा छा गया। आसमान से दूर ही धूल का

बार नजर आया। जिले के नाचना, सुल्ताना और मोहनगढ़ में बवंडर का काफी असर रहा। नाचना में ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और हनुमानगढ़ के संगरिया सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा 5.5 सेंटीमीटर बारिश कोटपुतली के शाहपुरा में दर्ज की गई। आंधी बारिश के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव से राहत बनी रहने के आसार हैं। प्रदेश में आए प्रचंड तूफान और बारिश के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम के तंत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। जयपुर और कोटा जोन में बड़ी संख्या में बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और फीडर प्रभावित हुए। इनमें से 387 गांव में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि इनमें से 366 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल की जा चुकी है। वहीं 21 गांव में सप्लाई सुचारू करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिन वैश्विक स्तर पर खाद्य और पोषण के स्रोत के रूप में दूध के महत्व को पहचान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। ये डेयरी उत्पादन, सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देती है। विश्व दूध दिवस के मौके पर देश में अनेक स्थानों पर डेयरी और कृषि संस्थानों में सम्मान समारोह और जागरूकता शिविर रखे गए। उधर प्रदेश में पाली जिले के सादड़ी में विश्व दूध दिवस के मौके पर ऊंटनी के दूध का निःशुल्क वितरण कर इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक में हिंदी, मराठी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में फिल्मी गीत गाए। उन्होंने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और मशहूर गायक मोहम्मद रफी के साथ भी सैकड़ों गीत गाए।

0: नजर हो गई।
1: तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
2: प्रदेश में आज से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का यह अभियान 30 जून तक संचालित होगा। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अभियान के तहत होटलों, ढाबों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार को आईपीएल 2026 का खिताब दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 4 जून तक हीटवेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम लोक संगीत का। आज कलाकार हैं दीपाली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे दीपाली और साथी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT का।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
0: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
0: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
1: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
0: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
0: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर

0: जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में।
1: जी।
0: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
0: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना।
1: जी।
0: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
1: जी।
0: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
1: जी।
0: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक
1: जी,
0: है
1: जी।
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
1: जी।
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो,
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती।
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य

0: को बदल दिया है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
1: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
0: जी,
1: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
0: जी,
1: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
0: जी।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
0: जी।
1: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
0: जी।
1: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
0: जी।
1: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
0: जी।
1: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
0: जी।
1: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
0: जी।
1: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
0: जी।
1: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
0: जी।
1: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
0: जी।
1: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है, तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
0: जी।
1: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
0: जी।
1: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
0: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
0: जी।
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
0: जी।
1: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
0: जी
1: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
0: जी।
1: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
0: जी,
1: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
0: जी।
1: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों।

0: की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में मौखिक भाषा में बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी
0: ठीक है लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां उत्तरी भारत में
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी।
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी।
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा एक विषय एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो टेक्टाइल पाथ क्या आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड

0: मानकीकृत जांच सूची है
1: जी,
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक CIET NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIET वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIET की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी,
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?

0: तरफ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। संगीतकार हैं अनु मलिक, गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने, आवाजें कुमार सानू और विभा शर्मा की हैं और फिल्म का नाम है इश्क।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। जावेद अख्तर ने गीत को बोल दिए हैं, संगीतकार हैं अनु मलिक और फिल्म है दिल जले।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी 90 साल की

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: पर
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की आवाजों में सुनिए अगला गीत। गीतकार हैं रानी मलिक, संगीतकार हैं अनु मलिक और ये गीत है फिल्म बाजीगर से।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अभिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में समीर का लिखा गीत, जिसे संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।

0: यार नाटक लेकर, नचना यार नचना।
1: अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, भैन की सगाई च तो भाई नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

सुन रहे हैं फिल्म संगीत। ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म दरार से। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं। राहत इंदौरी ने गीत को लिखा है। संगीतकार हैं अनु मलिक।

हम आकाशवाणी बीकानेर के रोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दिन के 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से।

कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पहला गीत आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है सोनी महिवाल। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुर में, संगीत था आर डी बर्मन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है गुलजार, माफ कीजिएगा, फिल्म का नाम है गोलमाल। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत। कुछ भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है जमीर। गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने, संगीत दिया है सपन चक्रवर्ती ने।

सफर फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की, माफ कीजिएगा, मुकेश की आवाज में। गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है अपना देश। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में काला पत्थर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राजकुमार। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राजकुमार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है उमराव जान। गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत दिया है खय्याम ने।

आशा भोसले की आवाज में गाए उमराव जान फिल्म के स्किट के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215

0: 5.5 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था।

0: हेडलाइंस के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी समय में 12:10 पर आकाशवाणी बीकानेर की ढोलमारो चैनल से आप सुनेंगे नाटक कर्ज और फर्ज। लेखिका होंगी श्रीमती उषा किरण सोनी।

आकाशवाणी बीकानेर के लिए मेरू चैनल से ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। हमारी इसी सभा में 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर।

अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगे दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ठुला मारू चैनल से। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे अमृतमय माँ का दूध, विश्व दुग्ध दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, अभिभावकों का सानिध्य, थाली में संपूर्ण पोषण, नीलम संजीव रेड्डी पुण्यतिथि। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता, संस्कारों और जीवन मूल्यों की पहली पाठशाला माता पिता, वार्ताकार होंगी श्रीमती रेखा पाईवाल। कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ ब्यूटी टिप्स।

युवा साथी अपना कार्यक्रम युवानी सुनेंगे शाम 5:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा गर्मी के मौसम में रखें सेहत का ध्यान। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु जानकारी, कोणार्क मंदिर, रेडक्रॉस, विश्व दुग्ध दिवस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज़।

शाम 6:05 पर आकाशवाणी बीकानेर की ढोलमऊ चैनल से फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही गीतकार के लिखे हुए कुछ गीत।

6:40 समय रहेगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का आकाशवाणी जयपुर केंद्र से। श्रोता अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत सुनेंगे शाम 7 बजे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे जून माह के कृषि बागवानी और पशुपालन संबंधित कार्य, नौतपा में पशुओं की देखभाल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, विलायती बबूल से पर्यावरण को नुकसान। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर और शाम 7:45 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

रात 9:30 पर आकाशवाणी बीकानेर के रोल मोरो चैनल से आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ गीत। रात 10 बजे आप सुनेंगे खेल जगत का कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12:11 हुए हैं। अब आप सुनेंगे नाटक कर्ज और फर्ज। लेखिका हैं श्रीमती उषा किरण सोनी।

नमस्कार मेरा सादर सबको एक अर्थ एक संवेदना एक विचार के साथ मुझ निर्देशक का इस नाटक से पूर्व। वह होती है भाषा हमारी, होती है हमारी त्वचा, होती है आंसू और अभिलाषा। क्या क्या नहीं होती माँ, क्या क्या नहीं होती माँ, कर सकता है कौन उसे अपने भावों में व्यक्त, किंतु रिश्तों के टूटते दम ने बैठा दिया उसको अंधेरे कोने में अकेला। क्या ठीक है वो अंधेरे में, क्या दे रहे हैं उसका दाय उसे हम वापस, क्या माँ वंचित तो नहीं हमारे प्रेम से, कहीं पहाड़ तो नहीं टूट रहे उस पर गमों के, इस सदी के बेटों से दूर तो नहीं हो रहा उसका दामन। यही सब सोच रहा था कि सुनाई पड़ी कुछ सिसकियां, कुछ कराहें, और वो जो कर दिया जाता है अनदेखा हर बार।

0: भास्कर, बेटा भास्कर बड़ा दर्द है, क्या करूं? इस प्लास्टर ने तो जान ले ली है, कब खुलेगा? सहा नहीं जा रहा बेटा।
1: अब ये क्या कर रही हो मां? थोड़ा तो धीरज रखो, अब दर्द है धीरे धीरे कम होगा। तुम्हारी बहू कह रही थी कि तुम कुछ खाती पीती भी नहीं हो, अब देखो ना कितनी कमजोर हो गई। अरे ऐसे कैसे चलेगा मां, अब कुछ खाओ तो बनवा दूं।
0: अरे नहीं, भूख नहीं है रे, मैं बिस्तर पे पड़े पड़े उकता गई हूँ, मुझे उठाकर बाहर लिटा दो, मेरा जी घबरा रहा है।
1: अरे अरे ये क्या कर रही हो मां, अब लेट जाओ। अरे इस तरह से क्यों उठ रही हो, अभी डॉक्टर आने वाला है, चुपचाप लेट ही रहो, शायद डॉक्टर साहब आ गए, तुम लेटो।
2: कैसी हैं माता जी, कैसी हैं आप? हैं भाई, लगता है भास्कर माता जी कुछ खाती पीती नहीं, बहुत कमजोर हो गई हैं आप।
0: डॉक्टर साहब, मुझे इस प्लास्टर के कारण बड़ा कष्ट है, हे भगवान, मैं इस दर्द से मरी जा रही हूँ डॉक्टर साहब।
2: लीजिए लीजिए लीजिए माता जी, मैं प्लास्टर को अभी काट देता हूँ, अभी बस आप आंखें बंद कर लीजिए, बस, थोड़ा सा

0: थोड़ा थोड़ा ही बचा, ये देखिए हो गया हो गया हो गया। भास्कर आप जरा पैर को पकड़ के रखिए, प्लीज प्लीज, बस बस बस,
1: पैर को सीधा करो।
0: हो गया, ये लीजिए। अब आप अपने पैर की अंगुलियों को हिलाइए और भास्कर बाबू आप जरा इधर आइए।
2: जी डॉक्टर साहब।
3: जी डॉक्टर साहब।
0: भास्कर जी देखिए, माता जी बहुत कमजोर हो गई हैं, उनका शुगर लेवल भी बहुत गिर चुका है
3: जी,
0: और पाचन क्रिया भी ठीक से हो नहीं पा रही, ऐसा मुझे लगता है। खून भी शायद बन नहीं रहा है। आप इनका पूरा ध्यान रखिएगा, बुढ़ापे की उम्र है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा वैसा हो जाए।
3: मैं पूरा ध्यान रखूंगा।
4: बेटा भास्कर, मैं इस कमरे में लेटे लेटे उबता गई हूँ, मुझे खुले में बाहर लेटा दे, बाहर लेटा दे।
3: अब तुम लेटे रहो वहाँ, थोड़ी देर पहले से तो ड्यूटी पर आया हूँ, अब थोड़ी देर आराम तो करने दो, फिर आपको बाहर लेटा दूंगा। ओहो, अब फिर खड़े हो रहे हो आप, लेट जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ, अब लेट भी जाओ माँ।
4: हे राम हे राम, ये दिन भी देखना, ये दिन भी देखना, इस भास्कर के लिए मैंने दूसरों के लिए हुजूरी की, उनके झूठे बर्तन मांजे, बर्तन की डांट सही, डांट सही, राजी भास्कर, राजी इस बुढ़ापे में मेरी सेवा करना तो दूर, मुझे बात बात में डांट पा है, डांट पा है, इस असहाय अवस्था में मुझे, अवस्था में मुझे अपने ही बेटे के सामने गिट गिराना पड़ता है, भास्कर को पाला पोसा, बड़ा करके मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, जीवन लगा दिया, मुझे मुझे आज भी बीते दिनों का संघर्ष याद है, जब भास्कर की नौकरी लगी थी, नौकरी लगी थी, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, सब कुछ सब कुछ कल की सी ही बात लगती है, बात लगती है, बात कल की सी ही बात लगती है, सी ही बात लगती है।

0: माँ कहाँ हो? माँ लगता है आज माँ अभी तक नहीं आई, अब तो अंधेरा होने वाला है। चलो माँ के आने तक दीपक जला देता हूँ।
1: आज तो बहुत देर हो गई मुझे, भास्कर घर आ गया होगा, भूखा भी होगा। अरे लगता है भास्कर ने सांझ का दीपक जला दिया।
0: अरे माँ तुम आ गई, आज तो बड़ी देर कर दी। माँ मुझे जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना।
1: अरे बेटा मैं जिनके घर काम करने जाती हूँ ना, उनके घर मेहमान आ गए थे, इसी से देर हो गई। मैं बस अभी दो चार गरम गरम रोटी सेक देती हूँ, और ये देख दादा दही भी लेके आई हूँ, रायता बना देती हूँ, तुम खा लेना।
0: जल्दी बनाओ ना माँ।
1: देख तो बेटा इस समय कौन आया है।
0: अरे मामा जी आप।
2: अरे बाणिया कैसा है तू?
0: ठीक हूँ मामा जी, आप कैसे हैं?
2: दीदी कहाँ है भाई, क्या कर रही है दीदी, क्या कर रही है मेरी दीदी, क्या कर रही है?
1: आओ आओ आओ अनूप सिंह, खाना तैयार है, मामा भांजे दोनों ही भोजन कर लो। लो
0: बैठो ना मामा तुम भी।
2: अरे हाँ हाँ भाई बैठना तो पड़ेगा ही, बैठने के लिए ही तो आया हूँ, बहुत चलते चलते थक गया हूँ। अरे वाह वाह वाह वाह, इतना सारा खाना है, रायता तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है दीदी। और सुनाओ भास्कर कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई है, और परीक्षा कब है बेटा?
0: बस मामा जी पढ़ाई ठीक ही चल रही है, परीक्षा अगले माह होगी।
2: भास्कर बेटा देख इस बार दसवीं की तरह फर्जी वजन आनी चाहिए है, ताकि आगे बेटा अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके है।
0: जी मामा जी अपनी तरफ से तो पूरी तरह तैयारी कर रहा हूँ, पर मामा जी मैं आगे से कॉलेज में प्रवेश नहीं लूंगा, सोचता हूँ कोई प्रोफेशनल कोर्स करूँ ताकि माँ का सहारा बन सकूं।
2: अरे ईश्वर करे बेटा तेरी मनोकामना पूर्ण हो। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद बेटा तुम्हारी माँ का कोई है नहीं ऐसा जो उसकी उम्मीदों को पूरा कर सके बेटा। जब भी हम देखते हैं ना इस नजर से तो बेटा सबकी नजर

0: तुम पर टिक जाती है बेटा। बेटा अपनी माँ को संभाल के रखना बेटा।
1: मैं समझता हूँ मामा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा।

0: माताजी मुझे 500 रुपए दे दीजिए, मेरे बेटे को फौज में नौकरी मिल गई है, उसे ट्रेनिंग के लिए कल सुबह ही जाना है, आप मेरी तनख्वाह में से रुपए काट लीजिएगा।
1: अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है भंवरी, तेरी तपस्या का फल है कि तेरे बेटे की नौकरी लग गई है, ये ले 500 रुपए, और ये 200 रुपए मेरी ओर से भास्कर को दे देना, ये 200 रुपए मैं तेरी तनख्वाह से नहीं काटूंगी।
0: आप कितनी अच्छी है माता जी, आप लोगों के आशीर्वाद का ही तो फल है कि मेरे बेटे को फौज में नौकरी मिली है। अच्छा माता जी अब मैं चलती हूँ, भास्कर को कल सुबह ही भेजना है, इसलिए उसकी तैयारी भी करनी है।
1: अरे ठीक है हाँ हाँ जाओ जाओ, और सुनो उसे खूब प्रेम से विदा करना।
0: अच्छा चलती हूँ।

0: जब पापा छोटे थे तब खूब पढ़ते थे क्या?
1: हाँ बेटा, तुम्हारे पापा पढ़ते भी थे और छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे।
0: क्यों दादी?
1: उदय बेटा, तुम्हारे पापा जब बहुत छोटे थे तभी तुम्हारे दादा यानी तुम्हारे पापा के पापा भगवान के घर चले गए थे, इसीलिए मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही काम करते थे, तब जाकर घर का खर्च चलता था। फिर तुम्हारे पापा की पढ़ाई और किताबों का खर्च भी तो था ना, कहाँ से आता। इसीलिए भास्कर पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था।
2: उदय, दादी का सर मत खाओ वरना दादी बहुत पिटाई करेगी।
0: क्यों दादी, क्या आप सचमुच पिटाई करोगी? क्या पापा की भी पिटाई कर देती थी?
1: अरे मैं तुम्हारे पापा की भी पिटाई कर देती थी।
2: बहुत।
1: तुम्हारी नहीं करोगी। अरे तुम तो मेरी लाजा देते हो ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी शादी करूंगी और गुड़िया सी बहू लाऊंगी।
0: दादी तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा।
2: दादी से शादी करेगा?
1: जा, पहले मैं तेरी मिठाई करूंगी।
2: उदय भाग वरना दादी बहुत मारेगी।
1: मैं तुझे बताती हूँ, नहीं मानेगा तू। अरे अरे भास्कर जल्दी आ, जल्दी आ भास्कर, मैं गिर पड़ी।
2: क्या हुआ माँ? अरे सुनो सुनो, देखो माँ को क्या हो गया।
0: क्या हुआ दादी?
2: अरे माँ तुम चिंता मत करो माँ, मैं टैक्सी को लेकर आता हूँ।
1: उठा नहीं जा रहा, मेरे पैर में भैंस दर्द है।
2: टैक्सी से? हाँ
1: बेटा दादी, हाँ
2: देखिए गली नंबर 2 में 18 नंबर मकान पर जल्दी से टैक्सी ले आइए। हाँ इमरजेंसी है, अस्पताल है, अस्पताल जाना है। हाँ माँ माँ माँ तुम चिंता मत करो, टैक्सी आ गई माँ, तुम माँ को पकड़ो ध्यान से। हाँ हाँ ये लेट जाओ माँ, तुम चिंता मत करो माँ, हम जल्दी अस्पताल पहुँच जाएंगे माँ, तुम चिंता मत करो माँ, तुम चिंता मत करो।
1: देखो जल्दी करो, डॉक्टर के पास जल्दी लेके चलो।

0: तीन महीने हो गए
1: में सब कुछ बदल गया।
0: बुढ़ापे में अकेलापन ऊपर से चीजों के ना मिलने की बेवजह दर्द तो मुझे मार डालेगा।
1: और तो और
0: ये मास्कर भी बदल गया। अरे
2: क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है, क्यों बिना वजह परेशान कर रही हो?
0: नहीं बेटा, ये परेशानी की बात नहीं, कुछ तो टूटा है हमारे बीच। तुम घर से दूर होते जा रहे हो, चीजें तुम्हारे लिए पराई होती जा रही हैं, तुम कहीं डूबे डूबे परेशान।

0: से रहते हो?
1: हाँ परेशान रहता हूँ मैं, रहता हूँ परेशान। अब तुम्हें सब कुछ क्या बताऊँ, 1.5 लाख का कर्ज है मेरे सिर पर तुम्हारी बीमारी की वजह से। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और चल रही है, शेयर में लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया। और माँ तुम मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो।
0: अच्छा बेटा अच्छा, अपना काम खुद ही कर लिया करूंगी, अब तो मेरा प्लास्टर भी उतर गया है, बड़ी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं ये जग से। अरे अरे अरे कुछ फिसल गया, अरे अरे पानी तो मेज पे बिखर गया। भास्कर भास्कर देख तो, तेरी फाइल भीग गई है शायद।
1: क्या
0: देख तू,
1: मेरे दफ्तर की फाइल भिगो दी? ओहो ये क्या किया माँ, मुझे बोल दिया होता पानी के लिए, उठने की क्या जरूरत थी तुम्हें?
0: अरे अरे ये क्या किया, अपनी माँ पर हाथ उठाया, तुझे क्या बोलूं बेटा, तू मेरा भास्कर नहीं रहा, अब तू

0: दूंगी। अब तो मेरा प्लास्टर भी उतर गया है, बड़ी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं ये जग से। अरे अरे अरे तो फिसल गया। अरे अरे पानी तो मेज पे बिखर गया। भास्कर भास्कर देख तो तेरी फाइल भीग गई है शायद।
1: क्या
0: देख तू
1: मेरे दफ्तर की फाइल भिगो दी? ओहो ये क्या किया माँ, मुझे बोल दिया होता पानी के लिए, उठने की क्या जरूरत थी तुम्हें?
0: अरे अरे ये क्या किया, अपनी माँ पर हाथ उठाया, तुझे क्या बोलूं बेटा, तू मेरा भास्कर नेरा, अब तू बदल गया।
1: हाँ हाँ बदल गया हूँ मैं, बदल गया हूँ मैं। हाथों के बल के सकर तुम बिस्तर से नीचे उतर आई, पैर तो तोड़ ही रखा है, अब क्या हाथ भी तोड़ोगी? सबको परेशान कर रखा है, कहाँ जाओगी? बाहर बाहर ले चलो, बाहर ले चलो, बाहर ले चलो। मैं पूछता हूँ कहाँ जाओगी, बताओ बताओ कहाँ जाओगी, बताओ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें, कहाँ जाओगी बताओ तुम?
0: मुझे मत मार बेटा, मैं तो पहले से भरी हुई हूँ।
1: मत मार मत मार, दिन भर सबको तंग करती हूँ, बाहर ले चलो बाहर ले चलो। अब मैं क्या कमाना धमाना छोड़कर यहाँ बैठा रहूं, क्या खाऊंगा और क्या बच्चों को खिलाऊंगा? चुपचाप पड़ी रहो, मैं कहता हूँ चुपचाप पड़ी रहो, चुपचाप पड़ी रहो यहाँ पर।
0: छोटा मार कर क्यों मुझे कष्ट देता है, अरे गला दबा कर मार दे, हम दोनों ही मुक्त हो जाएंगे।
1: हाँ मुक्त हो जाएंगे दोनों। मेरा दिमाग खराब मत करो माँ, चुपचाप पड़ी रहो, बेकार बकवक मत करो।
0: बेटा पहले तो तू ऐसा नहीं था, मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन अब तुझे क्या हो गया है, तू बड़ा कठोर हो गया है, क्यों बताना?
1: हाँ हूँ ऐसा मैं, पहले तू बाल बच्चों का घर का ध्यान रखती थी, जिससे तेरी बहू को मेरे लिए थोड़ा समय मिल जाता था, और अब तो वो भी सारे दिन तेरी सेवा में लगी रहती है, न तू बच्चों का ध्यान रखती है और न मेरा।
0: तो मैं क्या करूँ बेटा, अब तो मैं अशक्त भी हूँ और असहाय भी, मैं तेरे घर और बच्चों की देखभाल तो दूर, खुद अपनी देखभाल भी नहीं कर सकती।
1: अरे तो कम से कम चुपचाप लेट तो सकती हो, हर दो मिनट में कभी कुछ मांगती हो कभी कुछ, ना खुद शांत रहती हो ना हमें शांति से रहने देती हो, जैसे ही ड्यूटी से आता हूँ तुरंत चिल्लाने लग जाती हो, शांति से बैठकर दो को खाने भी नहीं देती, खाने बैठता हूँ तो तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, दिन भर हाय हाय करती रहती हो।
0: तो क्या करूँ बेटा, मुझसे दर्द सहा नहीं जाता, हे भगवान मुझे इस नरक से मुक्ति दे दो, ऐसे तिरस्कार भरे जीवन से तो मृत्यु भली।
1: छी कैसी माँ हो तुम, अपने इकलौते बेटे के भरे पूरे संसार को नरक कहती हो तुम, दरअसल तुम्हारी चीख पुकार और कराहो ने ही मेरे इस घर को नरक बना दिया है, अब पड़ी हो यहाँ पर तुम।
0: हे भगवान अब नहीं सहा जाता, टूटे पैर का दर्द तो जैसे तैसे मैं सह भी लूंगी, पर अपनी संतान के शब्द बाण कैसे सहूं, भास्कर का एक एक शब्द मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभता है, तीर की तरह चुभता है।
2: दादी तुम क्यों रो रही हो, ना रो दादी, कल जब डॉक्टर साहब आएंगे तब हम उनसे कह देंगे कि वह तुम्हें जल्दी अच्छा कर दे।
0: बस बेटा तू ही सहारा है मेरा, तू अपने पापा जैसा कभी मत बनना, तू कभी मत बनना अपने पापा जैसा, कभी मत बनना बेटा, कभी नहीं कभी नहीं।

0: सकते हैं कि उनकी कोई देखभाल नहीं की जा रही। तुम्हें क्या पता, कल शाम को इस सामने वाले मनमोहन बाबू कह रहे थे माँ को अस्पताल भर्ती करा दो, वह उनकी अच्छी देखभाल हो जाएगी। अब तुम बताओ, क्या माँ की यहाँ ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो रही है? मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि वो इतना शोर क्यों करती है।
1: ओ, दर्द होता होगा तभी तो कराती है ना, कोई व्यर्थ में थोड़े ही चिल्लाता है।
0: ओहो, मान ली तुम्हारी बात। अब देखो ना, प्लास्टर कट जाने से पैर का भार घट गया है तो हाथों के बल सिरककर बिस्तर से नीचे उतर आई।
1: लेकिन
0: नीचे उतरने में अगर शरीर का भार न सह पाने की वजह से हाथ टूट जाते तो क्या होता?
1: लेकिन
0: पहले से ही कम परेशानी है हमारे घर में।
1: लेकिन ये बात आप उन्हें शांति से भी तो समझा सकते हैं, इतनी कठोर व्यवहार की क्या जरूरत है?
0: अब तुम मुझे शिक्षा देने की कोशिश मत करो और माँ का ख्याल रखो। एक तो कल विभाग में इंस्पेक्शन होने वाला है, उसकी चिंता करूं या घर की? दिमाग खराब हो गया है मेरा तो।
1: लेकिन कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, आपको इतने कठोर स्वर में सासू माँ से बात नहीं करनी चाहिए, और ऊपर से हाथ। हाथ उठाना, चाटा फाड़ा, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अच्छा था कि उदय वहां नहीं था।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, सुन लिया मैंने तुम्हारी बात। अब ज्यादा उपदेश मत दो, चुपचाप सो जाओ। मेरी माँ है, जैसा चाहूं व्यवहार करूं।
1: आपकी माँ? कुछ भी कहिए, सासू माँ के साथ आपका व्यवहार एकदम अनुचित था। कल को उदय यही मेरे साथ करे तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी।
0: अच्छा अच्छा, अब बक बक बंद करो, सो जाओ और रोशनी बंद करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। दिन भर ऑफिस में खटो और रात को यहां पर तुम्हारी बातें सुनो।

0: लीजिए, मैंने जग में पानी भर के रख दिया है।
1: ठीक है, और सुनो, बत्ती बुझा दो, मैं सोऊंगा, सुबह मुझे जल्दी जाना है।
0: रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
1: कहो, क्या बात है?
0: देखिए, आप सासू माँ से इस तरह बात ना किया करो, उन्हें बहुत दुख होता होगा। आखिर में वो आपकी माँ है।
1: तो क्या करूं मैं, इतना चिल्लाती है, इतना जोर जोर से कराती है, पास पड़ोस वाले

0: सासु माँ।
1: दीजिए उठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। उठ के पीजिए सासु माँ, उठिए। सासु माँ, उठिए सासु माँ, सासु माँ, सासु माँ, सासु माँ, सुनिए।
2: क्या हुआ?
1: जल्दी आइए, देखिए सासु माँ बोल नहीं रही है।
2: क्या?
1: हाँ
2: माँ।
1: और हिलडुल भी नहीं रही है।
2: क्या हुआ माँ?
1: जल्दी आइए ना।
2: अरे उठो माँ।
1: सासु माँ,
2: माँ उठो।
1: सासु माँ,
2: अरे माँ,
1: सासु माँ हमें छोड़कर चली गई।
2: माँ,
1: सासु माँ हमें छोड़कर चली गई है। अब तो खुश है ना आप? अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश है आप, बहुत खुश है। अब तो माँ चिल्लाएगी नहीं, अब तो माँ रोएगी भी नहीं। हाँ, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो दर्द होना ही नहीं चाहिए, आपको तो दर्द होना ही नहीं चाहिए। आपकी तो सब परेशानियां खत्म हो गई, सब परेशानियां खत्म हो गई। अरे जो बेटे अपना फर्ज नहीं निभाते, उनके लिए तो रोना भी एक तर्ज है। और मिस्टर भास्कर, तुम्हारी माँ तुम पर ये कर्ज छोड़कर चली गई है। हाँ, तुम्हारी माँ तुम पर ये कर्ज छोड़कर चली गई है। मिस्टर भास्कर, तुम्हारी माँ तुम पर ये कर्ज छोड़कर चली गई।

आप सुन रहे थे नाटक कर्ज और फर्ज, लेखिका थी श्रीमती उषा किरण सोनी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मेरू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। मिनी न्यूज 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:10 होने को है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है नसीब। गीत को लिखा है आनंद बख्शी।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। फिल्म का नाम है साथी। गीत को लिखा है मजरू ने, संगीत दिया है नौशाद ने।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में साथी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था नौशाद ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। फिल्म का नाम है अनजाना। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आपने सुना अनजाना फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्तियां की है। विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति शनिवार को 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई जाने का कार्यक्रम है। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इनकी कीमतें 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53.5 रुपए तक बढ़ गई है। 19 किलोग्राम वाले ये सिलेंडर होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों में उपयोग लिए जाते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के दाम अब 3,113.50 रुपए होंगे। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अमेरिका और ईरान में संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के मद्देनजर हुई है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। जून महीने को राष्ट्रीय एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। मानसून पूर्व मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान पूरे महीने मच्छरों की रोकथाम और जन जागरूकता के विशेष कार्यक्रम होंगे। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर सोर्स रिडक्शन कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एंटी लार्वा उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में साफ पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियानों से अब तक 15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से चलाए गए 6 विशेष अभियानों से लोगों को काफी राहत मिली है। इसके तहत 3,000 से ज्यादा हेडपंपों की मरम्मत और 1,600 से अधिक पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। इसमें विशेष टीमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों, पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। साथ ही विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 325 अवैध जल कनेक्शन हटाए। भरतपुर में आज दुपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। यातायात पुलिस ने भामाशाहों के सहयोग से ये वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता बताई गई, साथ ही यातायात नियमों की पालना करने की सीख दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित

0: होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलीमारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज प्रस्तुत करता है डॉक्टर सोनिका और डॉक्टर शर्मिला।

0: कुछ तुम बोलो कुछ हम कहें, ये अल्फाज एक दूसरे की मूक अभिव्यक्ति हैं, जिसमें दो इंसानों का अनूठा संगम दिखता है, जैसे मेरा और तुम्हारा, क्यों है ना?
1: सही कहा, जहां तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं, और हमारे इस कार्यक्रम का समय भी, जहां हम मिल रहे हैं हमारी बहनों से उनकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में, जहां दोपहर को उनको बेसब्री से इंतजार होता है, और आगाज करते हैं आज हम अपने इस कार्यक्रम का।
0: तो आज के आपके कार्यक्रम में होंगी कुछ खास बातें, कुछ खास गीत। तो आपकी रेडियो सखी डॉक्टर शर्मिला
1: और डॉक्टर स्मरण रेखा का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: तो ये सारी चीजें दिल से निकली हैं, क्योंकि आपसे मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए शर्मिला और मैं लेकर आए बहुत सारी बातें। कहते हैं ना कि जिंदगी को चलने के लिए कुछ आयाम चाहिए होते हैं, और उन आयामों में कुछ बातें खास हो जाती हैं, क्यों शर्मिला?
0: बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि बातों के लिए तो हमारी बहनें इंतजार करती हैं हमारा।
1: और आज की जो बातें भी हैं, जो कड़ियां हैं, इतनी खास हैं, जिसमें हम हमारे बड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपनी पसंद के बारे में।
0: और तुम कहना चाहती हो कि तरह तरह की बातें है ना,
1: जिसे हम चटपटी रसीली बातें कह सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है। इस कार्यक्रम की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ हम आपको दीन दुनिया से रूबरू तो करवाते ही हैं, साथ में खुद से भी पहचान करवाते हैं,
0: और करवाते हैं खूब सारा मनोरंजन भी।
1: और मनोरंजन होगा, क्योंकि जिंदगी जब चलना शुरू करती है वो एक बहुत ही खूबसूरत सफर होता है, और ये सफर सुहाना हो जाए तो शायद नगमा कुछ ऐसा होता है।

0: किसी ने कहा है ना कि यहाँ कल क्या हो, किसने जाना,
1: किसी ने नहीं जाना
0: और जाने भी क्यों ना, क्योंकि हमारे घर में वो जब बुजुर्ग होते हैं ना, जो हमारे साथ में हमारे अभिभावक बन के चलते हैं, उनका सानिध्य हमें हमेशा कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है, हमें जीवन जीना सिखाता है।
1: बिल्कुल, मतलब स्वर्ण तुम कहना चाह रही हो कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस है ना, जो हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र जो वैश्विक अभिभावक दिवस है ना, इसका उद्देश्य पता है स्वर्ण क्या है, दुनिया भर के जितने भी माता पिता या अभिभावक है ना, उनको बच्चों के प्रति मतलब जो निस्वार्थ प्रेम होता है ना, जिसमें कोई वो नहीं है, उसका उनका समर्पण जो है वो मतलब आजीवन बलिदान के लिए उनको सम्मानित करना चाहिए कि मतलब ऐसा
0: कैसे कितना खुद को डेडिकेट करके दिया।
1: बिल्कुल, क्योंकि माता पिता की जो छत्र छाया है ना, उनका जो मार्गदर्शन है वो अपना एक अलग ही महत्व रखता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि बहनों आप सभी जानते हैं कि इस बार 2026 का जो इसमें विषय रखा गया है, थीम रखी गई है, वो है माता पिता के साथ एक साथ, यानी माता पिता का हमारे साथ होना और हमारा उनके साथ में साथ देना। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए हमारे माता पिता कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इस दिवस को कोई हर दिन, जैसे हम तो भारतीय हैं, हमारे लिए तो हर दिवस हमारे माता पिता का दिवस होता है, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब है कि हमें हमारे बच्चों को उनके जीवन मूल्यों को ये समझाना, जो आज के जनजी बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि हमारे संस्कार, हमारी चीजें, जड़ें कहाँ पे जुड़ रही हैं, उनको एक नई पहचान दिलवाना कि हमारे लिए हमारे माता पिता कितने जरूरी हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि अभिभावक जो होते हैं ना स्वर्ण, वो सिर्फ पालन पोषण ही नहीं करते हैं ना, वे बच्चों के हर कदम पर उनके भावात्मक और मानसिक संबल भी उनको बच्चों को प्रदान करते हैं ना, उनका साथ बच्चों को एक जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बच्चा बनाता है, मतलब उनको एक सहारा मिलता है। कहते हैं ना कि ऐश तो माँ बाप के पैसों से होती है, बाकी तो जरूरतें होती हैं। यह दिन हमें अपने अभिभावकों के योगदान को याद करने और उनके साथ समय बिताकर उनके प्रति आभार व्यक्त करने का भी एक अवसर।
0: बिल्कुल, और इसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली ये कि ये हमारी प्रथम पाठशाला है जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। दूसरा, माता पिता के साथ हमें भावात्मक सुरक्षा मिलती है, बच्चे उनसे मानसिक सबल होते हैं। और तीसरा, चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि इसी के साथ ही हम चल पाते हैं अपने माता पिता के साथ। और चलेंगे क्योंकि हमारे कार्यक्रम का विषय ही कुछ ऐसा है कि कुछ बात और कुछ
1: संगीत, मनोरंजन
0: तो मनोरंजन तो साथ साथ होगा, क्योंकि आप भी सोचिए कि माता पिता हमारे लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन भावना के साथ में।

0: स्वर्ण पता है आजकल हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे के लिए एक विशेष भोजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है माँ का दूध।
1: बिल्कुल सही,
0: क्योंकि नवजात शिशु के लिए माँ का जो दूध होता है वो अमृत के समान होता है और उसे संपूर्ण पोषण भी हम कह सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों से ये हम सुनते हैं, ये बातें नॉर्मल सी बातें हैं जो हम आजकल सुनते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि माँ का आंचल जो होता है बच्चे की पहली दुनिया होता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब एक नन्हा सा बच्चा इस अजनबी संसार में कदम रखता है तो वह डरा और सहमा सा होता है, लेकिन उस पल जब वह माँ का स्पर्श और उसका दूध जो है वो बच्चे को एक अलग ही एहसास
1: दिलाता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखा जाए तो अगर अमृत की बात करते हैं या अमृत में माँ की बात करते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है वो दूध बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। क्योंकि जैसे हम बात कर ही रहे थे हमारे सानिध्य में कि हमारे माता पिता का सानिध्य है, तो वहाँ माँ शब्द आया ना, माँ के बिना तो हमारा जगत ही अधूरा है। और जहाँ माँ प्रकृति का एक ऐसा स्वरूप बनकर आई है जिसके दूध के पोषण से गंभीर बीमारियों से जो बचाने का एक प्रावधान है, वो तो जैसे तुमने बताया ही कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि पता है क्या, प्रसव के तुरंत बाद आने वाला जो पीला और गाढ़ा दूध होता है ना, वो बच्चे के लिए पहला टीका कह सकते हैं हम उसको।
1: बिल्कुल
0: है
1: सही।
0: क्योंकि ये सिर्फ भोजन नहीं है बल्कि बच्चे की जिंदगी का की सबसे मजबूत ढाल है ये।
1: और इसी के लिए हम विश्व दुग्ध दिवस भी मनाते हैं कि हर तरीके के दूध, मातृत्व दिवस अलग है, स्तनपान दिवस अलग है, लेकिन विश्व दुग्ध दिवस के अंदर इन सभी की महत्ता आ जाती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि विश्व दुग्ध दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है।
1: बिल्कुल,
0: जिसका उद्देश्य है वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना, और यह दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष जो है 1 जून को मनाया जाता
1: है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम माँ के दूध की बात कर रहे हैं और विश्व दुग्ध दिवस है भी, जिसमें जीव जंतुओं के दूध की भी बात हो रही है, और इन दूध में भी वसा है जो बच्चों को संपूर्ण पोषण देता है, प्रोटीन है जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, और साथ ही माँ का दूध जो है वो माँ को भी कई बीमारियों से बचाता है, जैसे कि
0: कैंसर, स्तन कैंसर नहीं होता है ना, अंडाशय की कैंसर है उनसे भी बचाव करता है, उनकी हड्डियों की कमजोरी को भी दूर करता है ना, मतलब ये खतरा भी उनका कम हो जाता है।
1: और जब ऐसे खतरे को दूर करते हैं तो सबसे अच्छी चीज मानसिक सुकून देने के लिए क्या है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: स्वर्ण, हम अपनी बहनों से बातें भी करते रहेंगे, उनका मनोरंजन भी करते रहेंगे, लेकिन क्यों ना अपनी सखियों को एक सुना दे हम वार्ता, जिसका विषय है संस्कारों और जीवन मूल्यों की पहली पाठशाला माता पिता।
5: बिल्कुल सही, और इसकी वार्ताकार है श्रीमती रेखा पाईवाल। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की है और संयोजक है श्री अमित सिंह।
6: संसार में यदि कोई रिश्ता सबसे पवित्र, निस्वार्थ और सबसे महान है तो वह माता पिता का रिश्ता है। बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है, उसके पहले शिक्षक माता पिता होते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, उसी प्रकार माता पिता अपने संस्कारों और मूल्यों से बच्चे के व्यक्ति

व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं होते, बल्कि वे जीवन को आकार देने वाले शिल्पकार की तरह होते हैं। एक मूर्तिकार जिस प्रकार पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार माता पिता अपने बच्चों के जीवन को संस्कारों और मूल्यों से सजाते हैं। माता पिता के संस्कार व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। धन संपत्ति समय के साथ समाप्त हो सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर व्यक्ति का साथ देते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तब उसे दुनिया के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वह बोलना, चलना, सही गलत में अंतर समझना सब कुछ अपने माता पिता से सीखता है। माँ की ममता और पिता का अनुशासन मिलकर बच्चे के जीवन की मजबूत नींव तैयार करते हैं। कहा गया है कि माँ का घर का गौरव है तो पिता घर का अस्तित्व, माँ के पास अश्रु धारा तो पिता के पास संयम। जैसे दोनों समय का भोजन माँ बनाती है, तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था पिता करते हैं।

माँ की ममता और पिता का अनुशासन मिलकर बच्चे के जीवन की मजबूत नींव तैयार करते हैं। कहा गया है कि माँ का घर का गौरव है तो पिता घर का अस्तित्व, माँ के पास अश्रुधारा तो पिता के पास संयम। जैसे दोनों समय का भोजन माँ बनाती है तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था पिता करते हैं। माता पिता एक ऐसा वृक्ष है जिनकी शीतल छांव में संपूर्ण परिवार सुख से रहता है। माता पिता बच्चों को केवल भोजन और कपड़े ही नहीं देते बल्कि उसे जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, दूसरे की सहायता कैसे करनी है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखना है और सच्चाई के मार्ग पर कैसे चलना है। इसी प्रकार माता पिता अपने बच्चों के व्यक्तित्व को संस्कारों और मूल्यों से सजाते हैं। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है। वहीं पिता जीवन में अनुशासन, साहस, मेहनत और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। पिता बच्चों को संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। जब बच्चे पिता को मेहनत करते हुए देखते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम आवश्यक है। हमारे भारतीय संस्कृति संस्कारों में माता पिता को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता और पिता को देवता के समान मानो। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास किया। श्रवण कुमार की कथा भी हमें माता पिता की सेवा और सम्मान का संदेश देती है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा धर्म भी है। माता पिता का त्याग और समर्पण शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे अपने बच्चों की खुशी के लिए स्वयं की इच्छाओं तक का त्याग कर देते हैं। कई बार माता पिता आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यदि माता पिता बच्चों को ईमानदारी, सत्य, करुणा, दया और सम्मान का महत्व सिखाते हैं तो वे बच्चे आगे चलकर समाज के अच्छे नागरिक बनते हैं। यदि वही बच्चे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वे गलत संगति और गलत आदतों की ओर बढ़ सकते हैं। घर का वातावरण बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और आपसी समझ का माहौल होता तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार सीखते हैं। माता पिता बच्चों को केवल उपदेश देकर नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी संस्कार देते हैं। यदि माता पिता स्वयं सत्य बोलते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। बच्चे अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसे अपनाने लगते हैं। जीवन मूल्य वे सिद्धांत होते हैं जो व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अनुशासन जीवन को व्यवस्थित बनाता है। समय पर उठना, पढ़ाई करना, दूसरों का सम्मान करना और जिम्मेदारियों को निभाना, ये सभी बातें माता पिता से ही सीखी जाती हैं। अनुशासन व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। दया और करुणा, दूसरों की सहायता करना और उनकी भावनाओं को समझना मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। माता पिता बच्चों को सिखाते हैं कि हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सम्मान का भाव व्यक्ति के चरित्र को महान बनाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। माता पिता बच्चों को मेहनत का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि कठिन परिश्रम और धैर्य से ही व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाए। माता पिता बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर बच्चे की क्षमता अलग होती है। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो कुछ खेल, कला, संगीत में। माता पिता अपने बच्चे की हर रुचि और प्रतिभा को समझते हैं, उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों की तुलना दूसरों से करना उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। आज हर माता पिता अपने बच्चों की छोटी बड़ी उपलब्धियों की सराहना कर उनके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। माता पिता बच्चों के हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं।

वे हर कठिन परिस्थितियों में उनका हौसला बढ़ाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। आज के समय में बच्चों पर पढ़ाई और प्रतियोगिता का दबाव बढ़ रहा है, तब माता पिता का प्रेम और सहयोग बच्चों के लिए जरूरी होता है। उनका पूर्ण समर्थन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करता है और उन्हें सफल नागरिक बनाने में मदद करता है। आज का समय पहले की तुलना में बहुत अधिक बदल चुका है। तकनीक और आधुनिकता ने जहां सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं बच्चों के पालन पोषण में नई चुनौतियां पैदा करती हैं। आज बच्चे मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जल्दी जुड़ जाते हैं। कई बार वे वास्तविक दुनिया से अधिक आभासी दुनिया में खो जाते हैं। ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वे अपने बच्चों को तकनीक का सही उपयोग करना सिखाएं। आज कई बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठकर बात करने के बजाय मोबाइल लैपटॉप के साथ अधिक समय बिताते हैं। यही स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि संस्कार सिर्फ इन चीजों से नहीं आते बल्कि परिवार के वातावरण से आते हैं। जब परिवार एक साथ बैठता है, साथ में भोजन करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, तब बच्चों में प्रेम, सहयोग और सम्मान की भावना विकसित होती है। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की परंपरा बहुत पुरानी रही है। संयुक्त परिवार में बच्चे केवल माता पिता से नहीं बल्कि दादा दादी, चाचा चाची और परिवार के अन्य सदस्यों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के समय में जब एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, तब भी हम यही कहेंगे कि हमारे माता पिता या अभिभावकों का महत्व कम नहीं हो जाता। हमारे देश में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में माता पिता और उनके संस्कारों के महत्व को स्वीकार किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी अपने माता पिता से मिले संस्कारों को अपनी सफलता का सबसे बड़ा कारण मानते थे। वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें सादगी, ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता के संस्कार और शिक्षा का बड़ा योगदान रहा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी ने उन्हें बचपन से ही साहस, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी। उन्हीं संस्कारों के कारण स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का संदेश देने में सफल हुए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी स्वीकार किया था कि सत्य अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपने माता पुतलीबाई से सीखा। उनकी माता अत्यंत धार्मिक और अनुशासित थी। गांधी जी के जीवन में जो सादगी और नैतिकता दिखाई देती है, वह उनके पारिवारिक संस्कारों का परिणाम है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के जीवन में भी उनकी माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान था। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को राष्ट्रीय प्रेम, साहस और धर्म की रक्षा का संदेश दिया। इन्हीं संस्कारों ने शिवाजी को एक महान योद्धा और आदर्श शासक बनाया। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उनके माता पिता के संस्कार और उनके जीवन मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार माता पिता अपनी इच्छाओं और खुशियों का त्याग कर बच्चों का भविष्य बनाते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे जीवन में सफल हो सकें। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ रात भर जागती है। उनका यह त्याग शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन दुख की बात यह है कि आज कुछ लोग सफलता मिलने के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस माता पिता ने हमें चलना सिखाया, उनका हाथ पकड़ना, उनकी सेवा करना हर संतान का कर्तव्य है। जिन्होंने हमारे सपनों के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। इसलिए आज आवश्यक है कि हर माता पिता बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और भारतीय संस्कार दें। एक मजबूत राष्ट्र की नींव मजबूत परिवारों पर टिकी रहती है और मजबूत परिवारों की नींव अच्छे संस्कारों पर। यदि हर माता पिता अपने बच्चों को

0: अच्छे संस्कार दें तो हमारा समाज और देश दोनों उज्जवल बन सकते हैं। माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं होते, वे जीवन को सही दिशा देने वाले भी होते हैं। उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि यही संस्कारों की पहली और सबसे महान पाठशाला है। माँ की ममता, पिता का प्यार, इनसे ही सस्ता जीवन संसार। उनके संस्कारों की छाया में मिलती खुशियों की बहार। माँ देती स्नेह और दुलार, पिता सिखाते संघर्ष अपार। जिनके चरणों में स्वर्ग बसे, वे है जीवन का सच्चा आधार। आइए हम सभी आज यह संकल्प ले कि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और उनके आदर्शों पर चलेंगे और आने वाली नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देंगे।
1: सही कहा कि जब संस्कारों की बात होती है तो माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अभी बहनें सुन रही थी वार्ता जिसका विषय था संस्कारों और जीवन मूल्यों की पहली पाठशाला माता पिता,
2: और इसकी वार्ताकार थी श्रीमती रेखा पाईवाल और प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह जी।
1: और जैसे कि हम शर्मिला माता पिता से संबंधित इतनी बातें कर रहे हैं, तो बचपन में तुम्हें याद आता होगा कि जब माँ हमें काजल लगाया करती थी।
2: बिल्कुल, क्यों नहीं याद, पकड़ पकड़ के
1: पकड़ पकड़ कर वो जो काजल फैला लेते थे और उसके बाद में किसी डाकू मंगल सिंह से कम नहीं लगते थे।
2: लेकिन माँ को तो लगाना ही होता था, और एक वो माथे पे टीका भी,
1: बिल्कुल, ताकि नजर बट्टू बच्चे को नजर नहीं लगे। और ये कहते हैं ना कि काजल का अपना जो एक महत्व है ना, वो माँ के साथ बहुत प्यार से जुड़ा हुआ है। लेकिन माँ का बनाया हुआ हाथ का जो काजल था ना, वो आज भी हमें बदलते मौसम में आंखों को सुरक्षित रखने में सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण स्थान है।
2: क्योंकि स्वयं पता है क्या, बाजार में जो केमिकल युक्त काजल आ रहा है ना, उसकी बजाय अगर घर का बना हुआ शुद्ध काजल हम अपनी आंखों में डालते हैं तो वो हमारी आंखों को बहुत ही ठंडक भी देता है, उनकी सुरक्षा भी करता है और चमक भी देता है, एक अलग ही है ना। और ये प्राकृतिक होने के कारण नमी में भी ज्यादा फैलता भी नहीं है, इसीलिए इसका अपना एक अलग महत्व है।
1: बिल्कुल सही, महत्व के बारे में, माँ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि माँ से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना करियर क्या चुनना है। और उसी करियर से संबंधित बात होती है जब हम हमारी भारतीय सेना की बात करते हैं, और जब हम कहते हैं कि हमारे लिए हमारे जो सिपाही हैं वो कितनी महत्वपूर्ण रखते हैं और कहां पर सरहदों पर हमारी सुरक्षा के लिए हैं।
2: बिल्कुल, तो हम सुनाते हैं अपनी बहनों को कैलाश खेर की ये बाइट।
1: बिल्कुल,
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग.
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान.
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से.
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में.
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक.
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक.
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का.
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान.
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक.
3: हाँ, तो हम काजल पे थे कि हमारी आंखों का काजल हमारे लिए बहुत जरूरी है शर्मिला.
4: बिल्कुल.
3: और आंखों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके सूखेपन को, एलर्जी को कम करने के लिए हमारा जो पारंपरिक काजल है ना, जिसकी सामग्री तो तुम्हें ध्यान में होगी.
4: हाँ, उसमें क्या क्या करते हैं सुवर्ण की, 5-6 बादाम ले लेते हैं, थोड़ा सा देसी गाय का घी और एक छोटा चम्मच अजवाइन या त्रिफला पाउडर भी ले सकते हैं.
3: बिल्कुल सही.
4: और फिर उसकी एक बाती बना लेते हैं. बाती में क्या लेते हैं, एक साफ लंबी
3: कपड़ा
4: है ना, ले सकते हैं. इसके बीच में कुटी हुई बादाम और अजवाइन रखें और इसे रोल करके बाती बनाएं.
3: बिल्कुल. और इसके लिए

0: एक दीपक रखना बहुत जरूरी है। एक साफ मिट्टी का दीपक लें जिसमें देसी घी भरें और इस बत्ती को उसके अंदर जला दें।
1: बिल्कुल।
0: और इसके लिए प्लेट एक या थाली लेनी जरूरी है जिसे उल्टी करके रख दीजिए। तो उससे जब ये दीपक जलता रहेगा तो किनारियों की लौ से उसके चारों तरफ ये जो इसकी कालिक है वो जमा होती
1: है। 15-20 मिनट में ये काम हो जाएगा ना। और पूरी लोग जब ठंडी हो जाएगी तो चम्मच से अपन खुरच के उतार सकते हैं इसको, है ना।
0: और इसमें बाद में आप चाहे देसी घी डाल लीजिए, विटामिन ई डाल लीजिए साथ में, तो ये और अच्छा फेंट के नेचुरल काजल बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और इसे आप कांच के डिब्बे में पैक करके रखिए, किसी मेटल में डालकर नहीं रखिए।
1: हाँ, क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित रहती है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है ना।
0: बिल्कुल। तो और ये आंखों को सुरक्षा देता है। और जैसे मौसम बदल रहा है अभी, अपने रोज धूल भरी आंधी चल रही, तुमने देखा है कल भी अपने आंधी तूफान था यहाँ पर बीकानेर में, तो जो डस्ट पार्टिकल्स आंखों में जाते हैं ना, बहुत एलर्जी करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आंखों को मले नहीं, जिससे खुजली हो सकती है या इसे रगड़ने से कॉर्निया को नुकसान हो सकता है।
1: और को रात को सोने से पहले भी अगर हम काजल या किसी भी तरह का आई मेकअप जरूर लगाएं, ताकि हमारी जो आंखों के रोम छिद्र वो बिल्कुल साफ हो जाए, है ना।
0: और उसके मेकअप में भी है कि जो घर का बना काजल है अब रात को अपने आंखों में वो काजल लगाकर भी रख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही
1: धूप से भी बचाव करता है ये, क्योंकि तेज धूप और धूल मिट्टी से बचने के लिए बाहर निकलते समय सनग्लासेस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा है आजकल, है ना।
0: और ये जरूरी भी है कि हम कैसे अपनी उन चीजों को अपने संस्कारों के साथ में लेकर चलते हैं, हमारे माता पिता हमें क्या सिखाते हैं, ये पुरानी पौराणिक पीढ़ी में भी है, लेकिन आज किसी की पुण्यतिथि भी है ना।
1: बिल्कुल। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी की पुण्यतिथि है, और उन्हें याद करना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे बेदाग और प्रेरणादायी पन्नों को पलटने जैसा है।
0: वह
1: भारतीय राजनीति के एक ऐसे अनमोल रत्न थे जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और त्याग की एक बेमिसाल मिसाल पेश की है।
0: बिल्कुल। और कहते हैं ना कि आंखें सुरक्षित होंगी तो हम ऐसे महानुभूतियों की जीवनियां पढ़ पाएंगे, अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। और जब राष्ट्रपति की बात की जाती है तो उन्होंने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गरीबों के संघर्ष को देखते हुए बहुत से सेक्टर्स में काम किया, जिसमें उनकी सैलरी से लेकर जिसका एक प्रतिशत उन्होंने दिया था 70%, उसकी कटौती खुद से ही करनी प्रारंभ कर दी थी कि सबसे पहले तो मेरी सैलरी कम कीजिए ताकि मेरे देश की जनता तक उनका संघर्ष, जो उन वो जनता संघर्ष कर रही थी, उनको उसमें कोई बेनिफिट हो।
1: और पता है स्वर्ण, इसमें एक ये भी है कि रेड्डी भारत के एक ऐसे इतिहास के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, है ना। पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी ने उनकी सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। यह उनके व्यक्तित्व की वो ऊंचाई थी जहां राजनीतिक मतभेद मतलब बोना सा साबित हो गया उसके सामने, है ना।
0: और इनकी तो जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितने ही ऊंचे ओहदे पर बैठ जाएं, लेकिन हम बड़े फैसलों के साथ साथ अगर जमीनी सादगी से उससे नहीं जुड़ते तो हम महान नहीं होते।
1: बिल्कुल।
0: और उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, अपने भीतर देश सेवा और ईमानदारी की एक लौ को, एक मूल्य को अपने अंदर जागृत करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम हमारे बच्चों को आगे इसी से संबंधित जो आगे पीढ़ी में जो संस्कार देते हैं हम दे पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: और जब देंगे तो साथ में और क्या होगा। हमारे कार्यक्रम में
1: आगे बढ़ेंगे गानों के साथ।
0: बिल्कुल।

0: पता है स्वर्ण, हम अपनी बहनों से जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, उनको भूख भी जरूर लग गई होगी, है ना?
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही,
0: भूख की बातें करते करते बात कर लेते हैं पोषण भरी थाली की।
1: बिल्कुल, पोषण भरी थाली सारी संपूर्ण ऐसी होती है जो हमें बहुत पौष्टिक चीजों के साथ साथ लेकिन हमें अपने करीब ले आती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमारी भारतीय थाली असल में हमारी माँ, दादी और नानी की प्यार, उनकी ममता और सदियों पुराने विज्ञान का एक खूबसूरत संगम है।
1: बिल्कुल,
0: जब आप अपनी पड़ोसी हुई थाली को देखते हैं तो उसमें आपको कई रंग दिखाई देते हैं, जिसमें हरा, पीला, लाल, सफेद, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये प्रकृति का इशारा है कि आपकी थाली में हर जरूरी पोषक तत्व मौजूद है। हमारी थाली में 6 रस होते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा और कसैला। ये जीवन के उतार चढ़ाव जैसा ही तो है।
1: बिल्कुल है, और पोषण की जहाँ तुमने बात की, मीठा, खट्टा, नमकीन, सारा, तो ये हमारा स्वभाव भी शायद कुछ ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में भी खट्टा मीठा पल चलता रहता है।
0: और जब माँ एक सूखी रोटी या दाल में जब एक चम्मच देसी घी डालती है ना, तो वो सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि वह घी हमारे दिमाग को भी तेज करता है और शरीर के जोड़ों को सुचारू रूप से काम करवाने पर भी मजबूर करता है। वह घी असल में माँ का वो निश्चल स्नेह है जो हर कड़वाहट को
1: दूर कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: और बिल्कुल ये पोषण बहुत जरूरी है, इसमें हरी सब्जियां और सलाद लेना भी बेहद जरूरी है, और साथ ही सरसों का तेल, जैतून का तेल का भी खाने में इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है ना?
0: और आजकल के मौसम में दही और छाछ का साथ भी हमारे पेट के लिए अमृत है।
1: बिल्कुल,
0: और ये हमारे पाचन तंत्र को भी शांत रखता है।
1: और शांति मिलती है एक और चीज से, जब हमारे मन में, हमारे सुकून में गीत संगीत का एक सुरीला सा नगमा चलता है और हमारे पेट के साथ साथ दिल को भी खुशनुमा बना देता है।

0: आपने किताब में प्यार से ऑटोग्राफ किया, मैंने प्यार ही प्यार भर दिया किताब में। खोल के पहले ही सफे पे देखिए। उस रात शमी की पार्टी में हम दोनों में एक बात अधूरी रह गई थी।
1: कोई सुंदर बात कभी अधूरी ही रह जाए तो बहुत बात होती है उसमें।
0: और ये बात कैसी लगी आपको?
1: बहुत नटखट, मोटी,

0: और पता है स्वर्ण, खुश रहने के लिए जैसे हम अपनी सखियों का मनोरंजन करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता देने वाली बात है खुद को खुश रखना, अपनी मुस्कान को अपनी पहचान बनाना, हर दिन मी टाइम निकालना और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना, ये है अपने साथ सबसे ज्यादा जरूरी रिश्ता जोड़ना। इसीलिए अपनी देखभाल को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।

0: का और खुद को खुशनुमा रखने के लिए कुछ खास मंत्र भी है।
1: तो मंत्र दे ही डालो अपनी बहनों को
0: भाई, ओम नमः शिवाय के अलावा भी बहुत कुछ है। अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, अगर कुछ अपने अंदर ढूंढना है तो सेल्फ केयर बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: खुद को चुने जिंदगी के सेल्फ फर्स्ट लव के लिए, क्योंकि वी आर द पर्सन हु आर डेडिकेटेड टू आवर सेल्फ। तो हमारे को अपने से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता। मुस्कुराए जी भरकर, जैसे आज के कार्यक्रम में मैं और शर्मिला दोनों लगे हुए हैं कि वी आर हैविंग अ स्माइल ऑन आवर फेस, कि आपको उस स्माइल की अनुभूति होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही
1: योग और ध्यान भी, क्योंकि अपनी दिनचर्या में व्यायाम और योग शामिल करें, यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है।
0: और सबसे अच्छी बात है कि हमें हमारे छोटे लक्ष्य बनाए रखने चाहिए, जिससे हमें छोटे छोटे चरणों में बांट लें और उससे अपनी जीत को आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है।
1: और दूसरों को भी खुश करें, कभी कभी किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करना, ये भी अपने आप को सबसे ज्यादा सुकून देता है।
0: बिल्कुल सुकून देता है। मोटिवेशनल कोट्स के साथ में कहते हैं ना कि सफलता वह है जो आप चाहते हैं, खुशी वह है जो आपको मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही
1: सफलता अंतिम नहीं है, आगे बढ़ने का साहस ही मायने रखता है।
0: बिल्कुल, और मायने रखता है केके का ये सॉन्ग, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन है कि दो पल की जिंदगी के उसके इस गाने के साथ ही, जहां पर उन्होंने स्टेज पे अपनी अंतिम श्वास ली थी, लेकिन ये सॉन्ग हमें मोटिवेट करता है कि सेल्फ लव एंड केयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग।

0: क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चुका है शर्मिला, और हमारे को विदा लेनी ही होगी,
1: मन चाहे करे या नहीं करे, लेकिन अपनी बहनों को फिर से मिलने के वादे के साथ।
0: बिल्कुल, इसी के साथ ही इजाजत दीजिए आपकी अपनी डॉक्टर स्वर्ण रेखा
1: और डॉक्टर शर्मिला को।
0: नमस्कार।

0: अभी बहन ने सुना अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 2 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में सुनवाए जाएंगे।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for

0: हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना कर

0: ते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य

0: टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं।

0: जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में। फिल्म का नाम है अजहर। गीत के बोल ही मनोज यादव के संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। अरिजीत सिंह के आवाज में उनका साथ दिया है अमाल मलिक ने।

अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज़ों में सनम रे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल थे मनोज मुंतशिर के, संगीत था अमाल मलिक का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बागी 2। गीत और संगीत है आरको का।

आतिफ असलम की आवाज में बागी टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत और संगीत था आरको का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में। फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान। गीत के बोल हैं नीलेश मिश्रा के, संगीत है प्रीतम का।

ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत को लिखा था, संगीत था प्रीतम का। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है तुम बिंटू। गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत है अंकित तिवारी का।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाए तुम बिन टू फिल्म के संगीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर हमारी पहली सभा यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: 1.95 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढूलू मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब प्रारंभ होती है। हम इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार। हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध,

0: व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 5:05 हुए, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं इतिश्री पारिक और सुमन विश्नोई।

0: सूरज आग बरसा रहा है, तापमान आसमान छू रहा है, लेकिन दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए मनोरंजन और संगीत की ऐसी ठंडी बयार जो आपकी गर्मी को पल भर में छू अंतर कर देगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। हम करने आए हैं सेहत की बात दोस्तों के साथ, और मैं हूँ आपकी युवा साथी सुमन बिश्नोई,
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त इतिश्री पारीख।
0: गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है
1: दोस्तों। गर्मियों का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके ध्यान में क्या आता है?
0: सबसे पहले तो तेज धूप और पसीना, और उसके साथ शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन का खतरा। गर्मियों में यदि हम अपनी दिनचर्या पर ध्यान न दे तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी परेशानी बन सकती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, गर्मियों में शरीर लगातार पसीने के माध्यम से पानी खोता रहता है, इसलिए गर्मियों में हाइड्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है। केवल प्यास लगने पर ही नहीं बल्कि समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए
0: दोस्तों। सामान्य रूप से 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बाहर काम करता है या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसे और ज्यादा अधिक पानी पीना चाहिए
1: दोस्तों। पानी के अलावा नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, ताजा फलों का रस और ORS भी बेहद लाभदायक होते हैं। ये शरीर में पानी के साथ साथ जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा कर देते हैं,
0: और इसके साथ ही तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जैसे फल हमारे शरीर को ठंडक देते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है।
1: अब खान पान की बात करें दोस्तों, तो इस मौसम में हल्का और पौष्टिक भोजन सबसे अच्छा रहता है। ज्यादा मसालेदार और तला हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए। हरी सब्जियां, सलाद, दही और मौसमी फल भोजन का हिस्सा होने ही चाहिए।
0: और दोस्तों, इस मौसम में बाहर का खुला

0: खाना खाने से बचना चाहिए क्योंकि तापमान के कारण भोजन जल्दी खराब हो जाता है और फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है हमारे लिए।
1: बिल्कुल, गर्मियों में दोपहर के समय गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। इससे बचने के लिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक धूप में कम से कम निकलें। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सिर ढक कर जाएं और पानी हमेशा अपने साथ रखें।
0: और दोस्तों, किसी को लू लग जाए तो उसे तुरंत किसी ठंडी और छायादार जगह पे ले जाए, शरीर को ठंडे पानी से पोंछे और पानी या ORS दे। यदि व्यक्ति बेहोश हो जाए तो तेज बुखार आ जाए तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें।
1: और बच्चों के लिए गर्मियों में सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, बच्चे अक्सर खेल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, पानी पीना भूल जाते हैं। इसलिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और उन्हें लंबे समय तक धूप में खेलने ना दें।
0: और बुजुर्गों को समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। उन्हें घर में हवादार वातावरण में रहना चाहिए और अधिक गर्मी में बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि कोई पुरानी बीमारी हो तो नियमित चेकअप कराते रहना चाहिए।
1: दोस्तों, आजकल एयर कंडीशनर का उपयोग भी बेहद बढ़ गया है, लेकिन AC का तापमान बहुत कम नहीं रखना चाहिए। अचानक बहुत ठंडे कमरे से तेज गर्मी में निकलना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है।
0: और दोस्तों, गर्मियों में फिट रहने के लिए जरूरी है वॉक करें, योगा करें, डेली एक्सरसाइज करें, जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है।
1: दोस्तों, अधिक गर्मी के कारण चिड़चिड़ापन, थकान और तनाव भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पर्याप्त नींद लें, आराम करें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें।
0: और प्रिजर्वेशन हमेशा बेहतर होता है। यदि हम समय पर पानी पिए, संतुलित भोजन करें और धूप से बचे तो अधिकांश समस्या से बच सकते हैं।
1: दोस्तों, गर्मी की दोपहर हो या शाम सुहानी, हम लेकर आए हैं संगीत की ठंडी कहानी। आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत।

0: दोस्तों अब स्वागत है आपका हमारे क्विज टाइम में और हम पूछेंगे आपसे दो प्रश्न।
1: दोस्तों आज का पहला सवाल है, भारतीय डाक विभाग द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित और विकसित किए गए डिजिटल सिस्टम का नाम क्या है? मैं प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। भारतीय डाक विभाग द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित और विकसित किए गए डिजिटल सिस्टम का नाम क्या है?
0: और हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा कहाँ है? मैं फिर से दोहराती हूँ, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा कहाँ है?
1: दोस्तों इन सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में।
2: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
3: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
2: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं भारत की उस अद्भुत धरोहर की यात्रा पर, जहां पत्थरों में भी सूर्य की चमक दिखाई देती है, कोणार्क सूर्य मंदिर।
4: बिल्कुल इतिश्री, यह मंदिर ओडिशा राज्य के पूरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था।
3: इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों इसकी संरचना। इसे सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े दर्शाए गए हैं, जो समय और गति के प्रतीक हैं।
4: श्रोताओ, यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण भी है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की झलक दिखती है।
3: बिल्कुल सही कहा सुमन तुमने। मंदिर के पहियों को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि उन्हें सूर्य की घड़ी के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इन पहियों की छाया देखकर समय का अनुमान लगाया जा सकता है।
4: कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क, जहां अर्क का अर्थ होता है सूर्य। इस प्रकार कोणार्क का अर्थ हुआ सूर्य का स्थान।
3: दोस्तों, वर्ष 1984 में यूनेस्को ने कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। इसके बाद से यह विश्व भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।
4: यह महोत्सव भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। देश विदेशी कलाकार आते हैं, दर्शक आते हैं और यहाँ पे भाग लेते हैं। यद्यपि समय और प्रकृति प्रभावों के कारण मंदिर का काफी भाग खराब भी हुआ है, पर फिर भी इसकी सुंदरता आज भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
3: दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक खास बात यह भी है कि इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की भव्यता और सौंदर्य आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है।

0: दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की ओर। कई बार हम अपने आसपास ऐसी परिस्थितियां देखते हैं जहां किसी को तुरंत मदद की जरूरत होती है, कहीं दुर्घटना, कहीं प्राकृतिक आपदा तो कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी। ऐसे समय में कुछ संस्थाएं केवल सहायता नहीं करती बल्कि लोगों के लिए उम्मीद बनकर सामने आती हैं। ऐसी ही एक संस्था है रेड क्रॉस।
1: बिल्कुल इतिश्री, हम अक्सर रेड क्रॉस का नाम सुनते हैं लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि इसका नाम केवल आपदा के समय मदद करना नहीं बल्कि रेड क्रॉस दुनिया भर में मानव सेवा और राहत कार्यों के लिए जाना जाता है।
0: बिल्कुल सुमन, और इसकी सबसे अच्छी बात शायद यही है कि इसका आधार किसी लाभ या पहचान पर नहीं बल्कि मानवता पर टिका है। कोई व्यक्ति किस देश, भाषा, धर्म या परिस्थिति से जुड़ा है उससे पहले उसकी जरूरत को महत्व दिया जाता है।
1: भारत में भी रेड क्रॉस लंबे समय से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं, रक्तदान अभियान, आपदा राहत और सामाजिक सहायता, ऐसे कई क्षेत्रों में इसका योगदान देखने को मिल रहा है।
0: दोस्तों रक्तदान की बात आई है तो एक बात याद आती है। अक्सर कहा जाता है कि रक्तदान ऐसा दान है जो सीधे किसी की जिंदगी बचा सकता है, और कई बार हम देखते हैं कि अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता होने पर रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
1: सही कहा तुमने, लेकिन केवल रक्तदान ही नहीं, लोगों को प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की जानकारी भी बहुत जरूरी है देना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हमें कुछ मिनट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
0: और मुझे लगता है सुमन की यही वजह है आज के समय में युवाओं को भी ऐसी सामाजिक कार्यों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाने का। स्कूल और कॉलेज के स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि सेवा भावना विकसित हो, क्योंकि समाज केवल बड़े प्रयासों से नहीं दोस्तों, छोटे छोटे योगदानों से भी आगे बढ़ता है।
1: किसी को समय देना, किसी की सहायता करना, किसी जरूरतमंद के लिए आगे आना, ये सभी मानवीय मूल्यों का हिस्सा है।
0: और एक बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेरित करती है, सेवा हमेशा बड़ी परिस्थितियों में ही नहीं होती, कभी कभी किसी की बात सुन लेना, किसी बीमार

0: व्यक्ति की मदद कर देना या किसी अभियान का हिस्सा बन जाना भी बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल, और जब समाज में ऐसे प्रयास बढ़ते हैं तो केवल समस्याएं कम नहीं होती बल्कि लोगों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना भी मजबूत होती है।
0: तो दोस्तों, आज के इस विषय से हम यही संदेश लेना चाहेंगे कि मदद करने के लिए हमेशा किसी बड़े अवसर का इंतजार करना जरूरी नहीं होता। जहां संभव हो, जिस रूप में संभव हो, हमें संवेदनशील और सहयोगी बनने का प्रयास करना चाहिए।
1: दोस्तों, इसी विचार के साथ अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले चरण की ओर। हमारे साथ बने रहिए।
2: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है,

0: खैर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

90 साल और एक फानिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादू माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: प्रिय श्रोताओ, अब समय है हमारे अगले विषय का। अब हम बात करेंगे आपसे एक ऐसे आहार के बारे में जो बचपन से लेकर जीवन के हर चरण में हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहा है, दूध। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल आज के दिन यानी 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस।
1: बिल्कुल सुमन, विश्व दूध दिवस का उद्देश्य केवल दूध के सेवन को बढ़ावा देना नहीं है दोस्तों, बल्कि लोगों को इसके पोषण, स्वास्थ्य और समाज में इसके योगदान के प्रति जागरूक करना भी है। दूध को लंबे समय से संतुलित आहार का एक बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है।
0: दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के विकास और मजबूती में सहायक होते हैं। बच्चों से लेकर एडल्ट की हेल्थ तक दूध सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है।
1: साथ ही भारत जैसे देशों में दोस्तों दूध उत्पादन केवल पोषण से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का भी एक बेहद महत्वपूर्ण आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी गतिविधियां आर्थिक रूप से लोगों का सशक्त बनाने में योगदान देती हैं।
0: दोस्तों, आज के समय में यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम केवल दूध के उपयोग पर ही नहीं, बल्कि उसके प्रोडक्शन, दूध की क्वालिटी और सुरक्षित उसके उपभोग के प्रति भी जागरूक रहे।
1: बिल्कुल, विश्व दूध दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन शैली छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होती है। संतुलित आहार, जागरूकता और सही पोषण, यही बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

0: दोस्तों, और अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे आज के आखिरी विषय पर, एक ऐसा विषय जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। चाहे हम इस पर ध्यान दें या ना दें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सुनने में थोड़ा बड़ा शब्द लगता है, लेकिन अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब अपने विचार, अपनी बात, अपनी राय खुलकर और सम्मान के साथ रखने की आजादी है।
1: हाँ, और अगर ध्यान से सोचे तो हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी घर में अपनी पसंद बताते हैं, कभी दोस्तों के साथ किसी बात पर बहस करते हैं, कभी किसी फिल्म, किताब या किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही अभिव्यक्ति का हिस्सा है।
0: बिल्कुल, पर मजेदार बात यह है कि अभिव्यक्ति हमेशा बोलकर ही नहीं होती। कोई लिखता है, कोई गाता है, तो कोई चित्र बनाता है, कोई मंच पर बोलता है, और आजकल तो लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी बातें रखते हैं। हर इंसान का अपना तरीका होता है,
1: लेकिन मुझे लगता है कि कई बार लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सिर्फ जो मन में है वो कह देना समझ लेते हैं, जबकि असल में सबसे ज्यादा जरूरी इससे जुड़ी बात है जिम्मेदारी।
0: सही कहा सुमन, क्योंकि अगर हमें अपनी बात रखने की आजादी है तो सामने वाले को भी अपनी बात रखने का उतना ही अधिकार है। कई बार हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने, लेकिन जब कोई अलग राय रखता है तो हमारे लिए उसे सुनना बेहद मुश्किल हो जाता है,
1: और शायद यहीं से संवाद शुरू हो जाता है। हर बात पर एक जैसा सोचना जरूरी नहीं है, अलग राय होना कोई समस्या नहीं। समस्या तब होती है जब हम एक दूसरे की बात सुनना ही बंद कर देते हैं।
0: और शायद एक और चीज आजकल बहुत देखने को मिलती है दोस्तों, लोग अपनी बात कहने से बहुत डरने लगे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं लोग

0: जज ना करें, मजाक ना बनाएं या गलत ना समझिए, लेकिन अपनी सोच को सम्मानपूर्वक रखना भी जरूरी है। हर आवाज का महत्व होता है।
1: और दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपनी बात कहते कहते ये भूल जाते हैं कि शब्दों का असर भी होता है। जो हम कहते हैं उसका प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ता है, इसीलिए खुलकर बोलना और सोच समझकर बोलना दोनों साथ लेकर चलना जरूरी है।
0: अगर हम देखें तो समाज में बहुत सारे बदलाव लोगों के सवाल पूछने, अपनी बात रखने और नए विचार सामने लाने से ही आए हैं। चर्चा होती है, विचार आते हैं, लोग सोचते हैं और धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगता है।
1: और मुझे लगता है कि अच्छे संवाद की शुरुआत छोटी जगहों से ही होती है। घर की बातचीत से, दोस्तों के बीच की चर्चा से, क्लासरूम से और कभी कभी किसी ऐसे ही रेडियो कार्यक्रम को सुनते हुए भी।
0: बिल्कुल सुमन, क्योंकि जब लोग खुलकर बात करते हैं तब सिर्फ जानकारी ही नहीं बढ़ती, समझ भी बढ़ती है, और जब समझ बढ़ती है तब समाज और बेहतर बनता है।
1: तो आज के इस अंतिम विषय से बस इतने ही संदेश देना चाहेंगे, अपनी बात रखिए, सवाल पूछिए, सोचिए, सीखिए, लेकिन साथ ही दूसरों को भी जगह दीजिए, क्योंकि संवाद तभी सुंदर बनता है जब उसमें बोलने के साथ सुनने की भी जगह हो।
0: बिल्कुल, इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम का एक और गीत सुनते हैं।

0: दोस्तों, हमने पूछे थे प्रोग्राम की स्टार्टिंग से आपसे दो प्रश्न, और अब वक्त है उनके सही जवाब जानने का।
1: हमारा आज का पहला प्रश्न था आपसे, भारतीय डाक विभाग द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित और विकसित किए गए डिजिटल सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही जवाब है जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम या फिर डिजिपिन। मैं एक बार प्रश्न फिर से दोहराती हूँ, भारतीय डाक विभाग द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित और विकसित किए गए डिजिटल सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही जवाब है जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम और डिजिपिन।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा कौन सा था? और इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा अपने उपयोग से अधिक पानी का संरक्षण और पुनः भरण करता है, इसीलिए इसे वाटर पॉजिटिव घोषित किया गया। दोस्तों, अब समय है आप सबके पसंदीदा सेगमेंट यानी रोजगार सूचना का।
1: दोस्तों, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी एसएससी सीजीएल 2026 के आवेदन खुले हैं।
0: 12,000 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं।
1: अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर पूरी जानकारी के लिए विजिट जरूर करें।

0: दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
1: फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम और एक नई बातचीत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए युववाणी। मैं हूँ आपकी दोस्त इतिश्री।
0: और मैं हूँ सुमन।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही थीं इतिश्री पारिक और सुमन विश्नोई। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम आरू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए। आइए अब सुनते हैं हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी कुछ ही देर में यानी 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही गीतकार के लिखे कुछ यादगार गीत। 7:40 पर हम आपको सुनवाएंगे जिले की चिट्ठी, ग्रामीण जगत। जी हाँ, ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे, समय रहेगा शाम 7:00।

7:45 पर और पुनः रात्रि 10:30 पर सजेगी सुगम संगीत की महफिल।

अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं इसी सभा में शाम 8 बजे, रात्रि में 9:15 और पुनः 9:30 पर।

लोक संगीत का कार्यक्रम होगा, समय रहेगा 8:30, वहीं खेल जगत। जी हाँ, ये नाम है कार्यक्रम का जो हम आपको सुनवाएंगे। समय रहेगा रात्रि 10:00।

ये थी हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की

0: सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 6:05 हुए, आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गीतकार के तहत आनंद बख्शी के लिखे कुछ चुनिंदा सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी एट 90। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक ही गीत कार्यक्रम। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे कुछ चुनिंदा सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया ये सदाबहार नगमा। फिल्म का नाम है लोफर।

संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, आवाज थी रेशमा की और गीतकार थे आनंद बख्शी। इस गीत के साथ ही एक ही गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की आज से शुरुआत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रमासिया गांव से इसका शुभारंभ किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने तय किया है कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड से वंचित किसानों के कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग बढ़ाना होगा। सही बुआई, रोग से बचाव और कम बारिश की संभावना को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके अपनाना समय की जरूरत है।
1: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, निकाल के देखा कितना जिंक, कितना पोटास, कितना बोरान, और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उतना ही डाला, तो पैसा भी बचेंगे, धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहाँ सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे, और एक बैलेंस खाद का उपयोग। वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
0: 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज जल से संबंधित उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन माहा का शुभारंभ किया। ये जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और जल उपयोग दक्षता जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दोनों मंत्रियों ने नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में

0: इस मिशन की शुरुआत की। कार्यशाला में जल संकट के समाधानों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए उपग्रह आधारित अनुप्रयोगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें 24 प्राथमिकता वाले अध्ययन और सहयोग के क्षेत्र पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं। राजस्थान सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हुई। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इनकी जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2020 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इस पहल के जरिए 75 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने लाखों परिवारों को विश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया आधार दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों, आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र साहू ने आज बालोतरा जिले का दौरा कर अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी जानी। श्री साहू ने बालोतरा थाने का निरीक्षण कर सीएलजी सदस्यों से फीडबैक लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाएगा। श्री साहू ने कहा कि नए पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के बाद तैनाती कर नफरी की कमी को दूर किया जाएगा।
1: देखिए, पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179, वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षणाधीन। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, एक साथ इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी, तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस को खाले का ध्यान है, वो उपलब्ध करा रही है। आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है, वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि होगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य सरकार की नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने और सफलता की कहानियां तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माय भारत और राज उन्नति जैसी सरकार की पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने इन पहलों के क्रियान्वयन में रुचि भी दिखाई है। बैठक के दौरान प्रदेश में खनिज अन्वेषण, नीलामी प्रक्रिया, पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई परियोजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र सुधारों से जुड़े विषयों के संबंध में भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने को कहा। मुख्य सचिव ने योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए पीएम पोषण योजना के पोर्टल को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिले के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने भवन निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन किया। ये केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं वाला होगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर श्री भांबू ने कहा कि मंत्रालय ने राजस्थान की 7 डाइट

0: परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, जिनमें झुंझुनू भी शामिल है। प्रदेश में मध्य और पूर्वी जिलों में आज भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर में बादल छाए हुए हैं और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश हो रही है। अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा और सीकर जिलों में भी तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की बारिश तो कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। पाली में तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। करौली में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज हुई ओलावृष्टि से कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है।
1: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे, जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में भी तेज आंधी के साथ कहीं कहीं ओले गिरे। इसके अलावा बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के समाचार हैं। राज्य में पिछले 3 दिन से जारी आंधी और बारिश के चलते ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे, वहीं रात का पारा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। 3-4 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश के आसार हैं। झुंझुनू में 17वीं बटालियन जाट रेजिमेंट का 60वां स्थापना दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और वर्तमान सैनिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने सैनिकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा भी की। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले साल मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की बढ़ोतरी हुई, वहीं सेवा क्षेत्र में 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों की द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख संदीप केडिया ने तैयार किया है। झुंझुनू जोन में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 23,000 से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। बिजली की मांग बढ़ने और सरकार की ओर से सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के काम में काफी तेजी आई है। जिले में रोजाना 70 से 80 आवेदक सोलर सिस्टम लगाने के लिए मिल रहे हैं। गाँव और कस्बों में शिविर लगाकर लोगों को सोलर सिस्टम के फायदे बताए गए। इसके बाद लोगों में सोलर पैनल लगवाने के लिए रुचि जागी है। डिस्कॉम के SE महेश टीबड़ा ने बताया कि जोन के 23,000 सोलर सिस्टम से 86,000 किलोवाट से ज़्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है। इससे डिस्कॉम को कई गांवों और ढाणियों तक बिजली सप्लाई में मदद मिली है। आमतौर पर पराली को किसानों और पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या माना जाता है, किंतु ज़िले में पराली से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके लिए मंडरेला रोड पर आधुनिक बायोमास पावर प्लांट लगाया गया है। इससे बिजली जरूरतें भी पूरी हो रही है, साथ ही प्रदूषण भी कम हो रहा है। इस संयंत्र से हर महीने 1 करोड़

0: से अधिक यूनिट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिससे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि कचरे को उपयोगी संसाधन में बदला गया है। साथ ही स्थानीय किसानों को भी अपने कृषि अपशिष्ट पराली का सही निस्तारण करने का जरिया मिल गया है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसके जरिए पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जा रही है। गंगा दशमी के अवसर पर बगड़ कस्बे के फतेह सागर तालाब से जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा, पीपल पूजन, सरोवर पूजन और श्रमदान के कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने जल बचाने और स्वच्छता बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने इस मौके पर कहा कि जल संरक्षण में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक भागीदारी के साथ जल संरक्षण के प्रयास करने पर पानी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई रखी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस जनसुनवाई में जिले भर से परिवादी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मामलों के शीघ्र निस्तारण करने को कहा। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाने पीने की चीज़ों के नमूने लिए गए। इनमें गड़बड़ियां सामने आने पर दो दुकानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही मिलावटी चीज़ों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। उन्होंने बताया कि विभाग को मिलावट की जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा पिछले दिनों राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धोलपुरिया ने की। उन्होंने CMHO कार्यालय में बैठकर अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर धोलपुरिया ने झुंझुनू जिले के 236 उच्च जोखिम वाले गांव में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिला उपभोक्ता आयोग ने नई शुरुआत की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि अब उपभोक्ता और सेवा प्रदाता को सीधा पोस्टकार्ड भेजा जाएगा, जिसके जरिए दोनों पक्षों को मुकदमे की वास्तविक स्थिति बताई जाएगी। साथ ही आपसी समझाइश से मामले को निपटाने का मौका दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से हो रही प्राध्यापक कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए जिले में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 31 मई से 5 जून तक चलने वाले इन परीक्षाओं में 56,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस बार मानसून में जिले में 33 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झुंझुनू जिले के पंचगौरव में शामिल नीम के पौधों को इस मुहिम में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार वन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। झुंझुनू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी माए नूवी तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवण माथे जोर तीनों। 10 राज्यां माए राज्यसभा री 24 सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश माए 3 सीटां सारू चुनाव फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामा री देश माए सराहना भी। और प्रदेश का कई जिला माए आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़बाऊ नुकसान रा समाचार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। देश माए आज खेत बचाओ अभियान शुरू करीचियो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला रा रमासिया गाँव इनरी शुरुआत कीनी। इ मौके वे कहो कि दुनिया भर माए खाद रो मोल दुणो भेवण पाछे केंद्र सरकार किसाना ने सस्ती खाद मुहैया कराउण तय किन्नो है। कृषि मंत्री कहो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड नी बना सक्या किसाना सारू खास अभियान चलार ए कार्ड बनाया जावेला। वह कहो कि अब

0: खेती में सही बुआई बीमारियां बचाव और कम बिरखारी संभावना न ध्यान रखता था का वैज्ञानिक तरीका काम लेवना फैला
1: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे निकाल के देखा कितना जिंक कितना पोटास कितना बोरान और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उतना ही डाला तो पैसा भी बचेंगे धरती मैया भी बचेगी एक तो ये करेंगे दूसरे उन्नत खेती करना अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहां सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे सोयाबीन कैसे लगाना है सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे और एक बैलेंस खाद का उपयोग वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा बताना पड़ेगा
0: 30 जून तक चलने वाला ई अभियान रहते किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरीखी योजना वारो फायदो पात्र किसान ताई पुगावन रा खास जतन करिया चावेला ई अभियान रो मकसद खाद ने संतुलित तरीका काम लेवण ने बढ़ावो देवणो किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारी टेम सर देवणो और पंचायत लेवल माथे जनता री भागीदारी तय करनो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज पानी जुड़िया हलका माए बेहतरी सारू मिशन महा री शुरुआत कीनी वह नई दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास रवारा माए राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन कार्यक्रम माए इन री शुरुआत कीनी इन रो मकसद पीवन रा पानी और जल संसाधन प्रबंधन आबो हवा माए बदलाव रो सामोकरण रो बूतो और पानी ने समझदारी काम लेवन सरीखा हलका माए नूवी खोज ने बधावो देवणो है कार्यशाला माए पानी री परेशानी आगीकरण रा तरीका रा बारा माए विचार करियो चाट्यो है ई मौके जल शक्ति मंत्रालय और इसरो जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन सारू उपग्रह आधारित अनुप्रयोगा और उन्नत प्रौद्योगिकियां ने मजबूत बनावन सारू एक करार माथे सही कीनी राजस्थान समेत 10 राज्यां माए राज्यसभा री 24 सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना आज जारी करती रीची इंसागे पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू फेंक्यो है प्रदेश हूँ राज्यसभा रा 3 सदस्यां रो चुनाव करियो जावणो है इंसारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करिया जा सके है चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के पर्चा विधानसभा भवन रा कमरा नंबर 106 माए चुनाव अधिकारी सामी समारह 11 दोपहर 5:30 बजे ताई दाखिल करिया जा सके है नाम पानारी जांच 9 जून न करी चावेला पर्चा 11 जून न दोपहर 5:30 बजे ताई पाछा लिया जा सकेला जरूरत पड़िया 18 जून न वोट पड़ेला और सिंजा 5 बजे पाछे वोटा री गिनती करी चावेला ध्यान जोग है कि राजस्थान नु राज्यसभा सदस्य भाजपा रा रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस रा नीरज डांगी रो कार्यकाल 21 जून न पूरो फेरियो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरूभियां आज 6 बरस पूरा फेंक्या साल 2020 माए आज हीरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनरी शुरुआत कीनी ही इनरो मकसद रेहड़ी पटरी वाला ने आसान कर्ज मुहैया करावनो है योजना रे जरिए हाल ताई 75 लाख बत्ता लोगों ने 17,800 करोड़ रुपया रा कर्ज दिया चिया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माए भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सागे मुलाकात कीनी ई मौके दोनों नेता जनता रा भलाऊं जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा और आवती कार्य योजनावां रा बारा माए चर्चा कीनी पुलिस महकमा माए मकान रहवास रो काम देख रिया एडीजी भूपेंद्र साहू बालोतरा जिला माए अपराध और कानून व्यवस्था रा हालात रो जायजो लीनो व पुलिस वाला सागर मीटिंग कर वारी समस्यावां री जानकारी लीनी श्री साहू बालोतरा पुलिस थाना रो दौरो कर सीएलजी सदस्यों ही जानकारी लीनी ई मौके खबर नवीसा सागर बातचीत करता था काम वे कहो के जिला माए जरूरी साधना री पूर्ति बेगी करी जावेला एडीजी कहो के पुलिस लाइन सारू जमी आवंटन री कार्रवाई कर दी रिची है श्री साहू कहो के पुलिस माए नुआ भर्ती हुआ कर्मचारियां री सिखावण पाछे तैनाती कर नफरी री कमी दूर करी जावेला
2: देखिए पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है

0: इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षणाधीन है। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए एक साथ इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस को खाले का ध्यान है, वो उपलब्ध करा दी। तो आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि होगी।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राज्य सरकार का न्यू कराया जा रहा नुआ नुआ कामारी कामयाबी री कहानियां तैयार करन रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागर राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो के प्रदेश माए ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माई भारत और राज उन्नति सरीखी सरकारी कोशिशा ने देश भर माए बेहतरीन कोशिशा रा तौरों पिछाण मिली है। मीटिंग माए प्रदेश माए खनिजा री खोज, नीलामी प्रक्रिया, पीवण रा पानी री उपलब्धता, साफ सफाई, पाना तून जुड़ी परियोजनावां और ऊर्जा हलका माए सुधारा रा बारा माए चर्चा करी जी। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रा कामकाज रोई जायजो लीनो। वे राज्यरी स्कूलों माए विद्यार्थियों ने पौष्टिक भोजन मुहैया करावन सारू अहलकारा ने लगातार जांच रा हुकम तीना। झुंझुनू जिला रा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनायो जावेला। इन सारू शिक्षा मंत्रालय 13 करोड़ रुपया मंजूर कीना है। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग इरा काम रो आज भूमि पूजन कीनो। इ मौके विधायक भांबू कहो के मंत्रालय झुंझुनू समेत राज्यरा 7 डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनावन रो फैसलो कीनो है। झुंझुनू माए जाट रेजिमेंट री 17वीं बटालियन रो 60वां स्थापना दिवस समारोह उमाव सागे मनाईचियो। कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग फौजियां सामी आवण वाली चुनौतियां और वारा निपटारा रा बारा माए चर्चा कीनी। कार्यक्रम माए पहली वाला और मौजूदा फौजी और फौजियां रा परिवार वाला शामिल थिया। मौसम प्रदेश रा बीचला और उगनी जिला माए आज ही आंधी बारिश रो सिलसिलो चालतो रहो। राजधानी जयपुर माए सिंजानी पोर बादला मंडिया और कुछ हल्का माए छांटो छिड़को भियो। अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और सीकर जिला माए जोरदार बायरो बाजन सागे, कठे कठे हल्की बारिश हुई तो कठे कठे ओला पड़िया। पाली माए बाजा जबरदस्त बायरा रे कारण कई रूखड़ा उखड़ गया और बिजली रा खंभा पड़ गया। करौली माए दोपहर पाछे बिरखा हुई जिनू गर्मियों थोड़ी साता मिली। दूजगानी नागौर माए ओला पड़माऊ कपास री साख और सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना ने नुकसान फियो।
2: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
1: चित्तौड़गढ़ में आई तेज आंधी अवन सागे कठे कठे ओला पड़िया। बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद समेत कुछ जिला माए जोरदार बायरो बाजन सागे छांटो छिड़को विवन रा समाचार है। राज्यरा घनखर हलका माए लाड़ला 3 दिनों चाल रहा आंधी और बारिश रा सिलसिलाऊ दिन री बगत पारो 40 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो जबकि रात री बगत ये तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर दर्ज करियो जा रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 1 सप्ताह ताई प्रदेश माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है। 3-4 जून ने बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आंधी बारिश माए ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। वस्तु और सेवा कर GST री मद माए लाड़ला महीना 1,94,000 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेड़ी करी ची। लाड़ला साल मई महीना माए आ रकम 1,88,000 करोड़ रुपया ही।

के दौरान सामान कर योग्य पूर्ति माए 26.9% जदकै सेवा हलका माए 22.2% री बढ़ोतरी दर्ज करी जी। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतो CEPA आज लागू हो गयो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बतायो कि इन करार दोनों देशों में माली और रणनीतिक रिश्ता और मजबूत बनेला। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी माए नवी तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवण माथे जोर दिनो। 10 राज्यों माए राज्यसभा 24 सीटा रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश माए 3 सीटा सारू चुनाव वेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामारी देश माए सराहुना भी। और प्रदेश का कई जिला माए आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़वाऊ नुकसान रा समाचार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलम आरू चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। जी हाँ, समय हो चला है कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं बजरंग सारस्वत और दीवान दान रत्नू।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने सगले हेताड़ू साथिया ने आपरे साथी दीवान दान रत्नु
1: और बजरंग सारस्वतरा
0: घणा घणा
1: राम राम। दीवान भाई ने भी मारा घणा घणा राम राम।
0: मोगला मोगला राम राम बजरंग भाई। के अबार तो चेठरा ए दो चार दिन है बड़ा जोरदार निकलिया, क्योंकि अपारे जठे जेठ में नौ तप्पो चाल रियो है, तो उन गर्मी रे माया मौसम आपरो मिजाज अलग है। पश्चिमी विक्षोभ रे कारण मौसम में परिवर्तन है और इन दिनों में मौसम परिवर्तन होने आपरी अलग पिछाण रखे भी है।
1: बिल्कुल सर दीवान भाई। ओ देखो, आप जेठ की बात करी तो जेठ है अब के दो, तो इदक मास चाल रियो है। ओ इदक मास रा ए 15 दिन अब रहा है, फिर जाऊंता जाऊंता वो जो जेठ है बीरा 15 दिन फिर है
0: अवेला।
1: तो ए जका दिन है ए 16 बीत्या है, अपारे अबार की तापमान में कमी आई है, मौसम सुहावनो होयो है। और आज ही आथन रा फेर पाछी आंधी आई, चारा कानी माटी उड़न लागी, तो भाई घरी लुगाया है नी छोरिया है बे, तो आंधी दिखता ही कमर कसर तैयार हो जावे के अबे लाग जीवड़ा झाड़ू है मैं। हाँ
0: देखो, लेकिन इस साथे साथे एक बढ़िया ओ भी हुए के गर्मी रो थोड़ो लारो छूट गयो, क्योंकि जिको तापमान बढ़ रही हो दिनों दिन भी तापमान में एक करसी विराम आ गयो और चार पांच दिन थोड़ा होरा निकल जाए।
1: और देखो सा, आज जून रो महीनो लाग गयो है, तो दीवान भाई आपा ने ओ ध्यान रखनो है, किसान भैया ने भी ध्यान रखनो है कि जून रे महीने रे महीने आपा ने खेती बाड़ी पशुपालन और बागवानी जे आपा ले रिया हाँ, तो आपा ने खास खास बात रो ध्यान रखनो है। तो दीवान भाई ई बाबत आपा की चर्चा करा तो कि आपा ने
0: देखो का... बिल्कुल बिल्कुल बजरंग भाई थे तो सगली बात, क्योंकि आपा रे जिका किसान भाई है बे खेती बाड़ी बागवानी और पशुपालन एतुन तो तीनों चीजों मिलजुल रहे, क्योंकि आ तीनों चीज अपारे लिए घनी महत्व है। तो ई खातर खेती बाड़ी में तो किसान भाई आपरी कमर कस राखी है, क्योंकि अबारे बखत में जेठ रे महीने जून रे महीने में जिकी खरीफ री फसल है उनरी तैयारी मिला गुड़ाए।
1: तो बिर सारो जिकी ग्रीष्मकालीन जुताई है, गर्मी री जुताई बा मोकड़ा भाई लोगा कर ली, दीवान भाई मैं भी कर ली, खेत में दो बार कल्टीवेटर चला दियो,
0: बहुत बढ़िया।
1: एक बीघे में दो ट्रोली गोबर री खाद नाख दी, 50 किलो जिप्सम है वो भी नाख दियो, भी हूँ पहली मैं मृदारी जांच करवा ली।
0: हाँ,
1: अपार बीकानेर छतरी माटी में जिप्सम घणो जरूरी है, नहीं तो उसर बढ़ जावे।

0: और बीहू पहली आप माटी की जांच करवा लेवा तो रिपोर्ट कार्ड वहाँ पर पूरे ध्यान पड़ जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो आगत फसल में भी ए चीज़ा हुए है, आप बताइए आगत फसल में गहरी जुताई अपारे इन धरती माथे चौकी मानी जाकर है, पर बजरंग भाई अठे नहर रो पानी भी है, मूंगफली और कपास मोटे रूप अठे हुए है, मूंगफली रो एशिया में सबू बड़ो हब है अपारो बीकानेर क्षेत्र मान्यो जावे है, तो मूंगफली रे मया जिकी किस्म है बा किसान भैया ध्यान रखो HNG 10, कपास री किस्म है RST 9, ए बहुत बढ़िया किस्म है अपारे क्षेत्र खातर, और अपारे सिंचाई रो पानी रे साथ साथ है अपा मूंगफली और कपास रहे साथ साथ है बीकानेर क्षेत्र में बाजरो भी बो सका, बाजरो माठ मोट है उंडरी भी बो सका, तो उंडरी बाजरे की किस्म है HHB 67 और मोठ री किस्म है RMO 435, ए आपा बोर ये जून रे महीने में बुवाई करा तो आगे आपारे आगत रे फसल में आपा काम में ले सका।
0: दीवान भाई बहुत ही बढ़िया जानकारी दी थे, और अपारो बीकानेर क्षेत्र है जेको है वर्षा आधारित खेती वालो क्षेत्र, तो अठे सूखी बुआई तो चलन है, बिरखा सु पहली आप बुआई कर देवा तो पेलड़ी बिरखा में ही बीज है जका उग जावे, पण आपने ओ ध्यान राखणो है के बीज उपचार ने भूलनो कोनी है। बाजरो जी आप लेवणो चावा तो 2 ग्राम 22 टीन सागे सागे 4 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड प्रति किलो रे हिसाब आप गाल देवा तो दीमक कोनी लागे।
1: कुल मिलार उपचारित करा, बीज उपचार करनो जरूरी है, लेकिन अब बजरंग भाई यहाँ है तो देखो हमारे पशु आप कृषि के साथ साथ आप पहला बात करी बागवानी और पशुपालन, तो बागवानी भी अपने बीकानेर क्षेत्र में अबार बागवानी भी किसान भाई प्रगतिशील किसान है, वे बागवानी क्षेत्र में कहीं कहीं काम कर सके और कहीं कहीं ध्यान रख सके।
0: तो दीवान भाई अबार अपारे जठे बेर लाग रहा है बठे तुड़ाई जकी है बा मई रे महीने में खत्म होगी, अबे जून रे महीने में अपाने जका पेड़ है बारी कंटाई छंटाई करनी है, सूखी अरे रोग वाली जी की टहनिया शाखावा है बाने तोड़ देनी है, कटोड़े भाग माथे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रो लेप करनो है, सागे किन्नू में जून ड्रॉप रोकण सारू 2-4D 10 PPM रो छिड़काव कर देनो है। और देखो जठे खजूर रा पौधा है तो जून में खजूर में कलर ब्रेक स्टेज आवे है, तो पानी रो हिसाब अपन राखनो पड़े, तो ई हिसाब अपन ड्रिप सिंचाई सबसे बढ़िया है, यू दीवान भाई 30% पानी है जी बीरी बचत होवे है, बीकानेर मायने आप अठे जे आप ड्रिप लगावनो चाहवा तो 70% अनुदान भी मिले है, और नुआ पौधा अपन लगावना होवे तो 1x1x1 मीटर रा गड्ढा अपा अबारी खोद तैयार कर देवा तो ठीक रहे।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब बजरंग भाई बात साथ आप देखो चर्चा लंबी जरूर होगी, पर एक थोड़ी सी बात और कर ला के खेतीबाड़ी रे साथ साथ आप पशुपालन जुड़ेड़ा हाँ, तो अबारे वक्त में पशुओं ने ध्यान रखना जरूरी है, तो अबार 2-4 दिन तो सही वेला, लेकिन इन वक्त में गर्मी बहुत तपे है बजरंग भाई, और गर्मी में अपने पशुओं विशेषकर दुधारू पशुओं बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दुधारू पशु है दूध देनो इन गर्मी रे लू रे दिनों में कम हो जावे।
0: तो दीवान भाई अपने खास बात पर ध्यान रखना है कि पशुआ सारू एक तो छाया रो प्रबंध करनो है, पानी रो प्रबंध करनो है, चारों जको है बारे आहार व्यवस्था है बिना माथे ध्यान रखना है, दिनों के 11 बजे लेर दोपहर 4 बजे तक पशुआ ने छिया में बांधना है खेजड़ी के नीचे, सेवण घास या पचे खेजड़ी री लूंग बाजरे री कड़बी ए मिलार खाण ने देनी है, और दिन में 3-4 बार पानी जको है वो दामणो है वो पशु आपरी इच्छा अनुसार पी ले
1: सी। कुल मिलार पशु ने जिन प्रकार अपा ध्यान रखा पानी बार बार पीवा भी, पशु ने भी पानी बार बार पाओ, और पशु ने खुले मत छोड़ो, गर्मी में खुले मत छोड़ो, कोई टापड़ो है छपरो है खींपारो बढ़िया सी छपड़ो बनावड़ो राखे तो अपार बीकानेर क्षेत्र में खींपरो छपरो ठंडो भी रहे वो भी अपा बना रख सका। और अब देखो बजरंग भाई अब तो बात और करा रहा था रखने क्योंकि बुक से रे माया बहुत मोटी मोटी लंबी चौड़ी
0: मैं तो बात पपैया बोल रहा है अब मौसम जी सुहावनो हाँ, तो मोर पपैया बोलन लाग जाए।
1: देखो पपैया बोलन लागे तो एक अपा गीतल ने मार्फत तो पपैया ने मीठी मीठी वाणी अपा भी सुन सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ सर।
1: सुनो सो पपैया रे ओ गीतल लो

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे

0: ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है।
1: वाह साहब, बजरंग भाई सीमा मिश्रा गौड़ो अबार पप्पयो गीतल्लो सुनियो। अर बीच में थारी बी टीम थोड़ी बात मैं विराम देव तो थोको कहो मैं कि अपा बात और कराला तो सा बात करता अपा नौ तपेरे मैं अपारे पशुवारी देखभाल रही। देखो बजरंग भाई के नौ तपेरे मया जिन प्रकार अपा ने मान खेने गर्मी लागे है उन्हीं प्रकार पशुआ ने भी हीट स्ट्रेस यानी गर्मी लागिया करे, लू भी लाग जाया करे और उन दौरान पशुओं ने बुखार आ जावे और बुखार सु पशु दो तीन तरह की ऐडी बीमारियां है जी की गर्मियों पैदा हो जावे। तो इन खातर आपने जरूरत है अपने पशुओं की सार संभाली देख रेख री और विशेषकर पशु ने पानी री पूरी व्यवस्था रखने जरूरी है।
2: दीवान भाई अबार आज को नौतपेरा अबे दो ही दिन है, आज है और कल है, तो दो दिन ए नौतपेरा है, ए ठंडा मीठा दिन हो गया, तो अपने अपारो भी ध्यान रखनो है, अपारे पालतू पशुवारो भी रखनो है। तो अपने दिनों के 7 बजे हूँ पहली और सिंजा 6 बजे रे पचे ही अपारे पशुआ ने कोई खुला छोड़ना है। दिन में 11 बजे हूँ लेर 4 बजे ताइबा ने छिया में बांधना है और हो सके तो पंखो चला दो, नहीं तो अपारे अठेरा देसी गऊ वंश जो है वो जलवायु अनुकूल है, यानी कि अठेरी जलवायु ने वो सोरा सोरा सेन कर सके। सागे ही अपा ने पक्को सेट नहीं हुए तो हरो नेट या खसरी जिकी बा हुए है टाटी बा लगावनी है, दो तीन बार पानी छिड़क देना है, या करने हूँ तापमान 4-5 डिग्री कम हो जावे। और पानी तो जिया आप कहे हो तो दिन में अपने पशु ने 3-4 बार पानी धामणो है, यानी कि दिनों के उठता ही चाटो बांटो देवता ही और रात रात सोवा भी हूँ पेली, और दोपहर के टाइम दिन में आपा 1-2 बार और धाम देवा तो पशु आपरी इच्छा अनुसार पानी पी लेसी। मिट्टी के कुंडा में पानी भर रखनो है, वो ठंडो रहे ताजो पानी देवनो है और नाना टोकड़िया टोकड़ी है बाने खनी छोटो कुंडो पानी रखनो है, वे आपरी जरूरत मुजब पी लेवेला।
1: और खाने पानी में देखो अपार पशुओं ने सुबह शाम ठंडे समय में देखो चारो पानी अपन नाखा तो दोपहर में सूखो चारो है, बाजरे री जिकी कड़बी है, गेहूं रो जिकी फूसा है या तूड़ी है बा आपा खड़ावा, इमें अपा और ध्यान रख सका कि चारे में 60% तो सूखो लेवा लेकिन 40% अनुपात में अपा यदि सूखे चारे अनुपात में रखा तो पशुरे वास्ते बढ़िया हुए। और इलेक्ट्रोलाइट यानी पशुरे में पानी की कमी नहीं हुए, इन खातर अपा सेंदो नमक और गुड़ मिला पर पशु ने दे सका और वो अपा एक तरह रो घोल बना 10-15 लीटर पानी रे में 50 ग्राम गुड़ और 20 ग्राम नमक। जिन प्रकार अपा मानव शरीर वास्ते अपा देखो पानी की कमी नहीं हुए इन खातर अपा घोल पीवा ओ आर एस रो घोल वगैरह पीवा तो उन्हीं प्रकार वो पशुओं वास्ते भी एक तरह रो घोल हुए जिनमें पानी की कमी नहीं हुए।
2: तो दीवान भाई बहुत ही बढ़िया बात है। और देखो हमारे घर करे हैं रामू भाई, तो रामू भाई आथन पोर कहीं करे के तरबूजा है, तरबूजा काकड़ी खीरो ए जका दुकाना माथे ए जका बेचनाड़ा है जठ कठे भी कम कीमत में मिल जावे बे ले रावे और बारा छोटा छोटा टुकड़ा कर पशुआ ने खावन ने देवे। तो रामू भाई कहे के ए जका तरबूज और दूसरा ए साग सब्जी हमें नाम बताया आ ए अपा पशुआ ने देवा तो बीर शरीर में पानी री आपूर्ति होवे और बीर दूध उत्पादन पर भी कोई न्यारो असर कोनी पड़े।
1: हाँ, और एक अब अलग बात लास्ट जावत आई है कि अपारे पशु ने देखो बजरंग भाई यदि किणी प्रकार की कोई गर्मी री कोई बीमारी लाग जावे तो पशुधन हेल्पलाइन 1962 यानी 1962 पर अपना 24 घंटे डॉक्टरी सलाह ले सका हाँ और फ्री।

0: फ्री सलाह मिले है आपां ने, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उन वास्ते आप सरकारों और हमारे पशु चिकित्सकों राय मशरो कर सका। और आ तो ही हमारे पशुधन संबंधित बात, और बजरंग भाई और भी आप बातचीत आगे जारी रखा ला, बीहू पहला सुना और एक बढ़िया सी गीतड़ लो
1: सुनाओ साहब।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: वाह सा वाह दीवान जी, बहुत ही सांतरो गीतरलो सुनायो, मुल्तान खां पार्टी गायोड़ो झिरमिर बरसे आड़ो। तो सा झिरमिर बरसे आप बैठे आप आस राख रहे हैं, बिरखा की तैयारी कर रहे हैं। तो खेत में जब बिरखा होवे, झिरमिर बरसे, तेज बरसे और आप चोखो फसल उत्पादन होवे, जद बढ़िया रहे। पर जरूरी वो है, मैं जी आप कार्यक्रम की शुरुआत में बतायो हो कि मृदारी जी की जांच है बा करावनी घनी जरूरी है। यहाँ नहीं हुए कि आप क्षेत्र मायने अनावश्यक रूप हुई बा पोषक तत्व की पूर्ति करता रहे, वहाँ जिका भी मायने पहली हुई मौजूद है। तो किसा पोषक तत्व आपने चाहिए है खेतरी माटी में, किसा कोनी चाहिए, आ जानकारी दीवान भाई आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड ही बता सके।
3: बिल्कुल बजरंग भाई, के जिन प्रकार अपारे मानव शरीर में भी कोई चीज री कमी हुए, कोई विटामिन से है, प्रोटीन से है, इंरी कमी हुए तो अपारो शारीरिक स्वास्थ्य गिरजे हुए। उन्हीं प्रकार अपा अबारे भगत में कहीं है विज्ञान रो युग कह सको, चाहे प्रगतिशील समय कह सको, अंधाधुंध अपा कीट रसायन रो प्रयोग करा उनरो भी फर्क पड़ सके है। जिनसु अपारी खेत री जी की मिट्टी है, माटी है, उनमें जो उरो तापमान है, बीरमया जिका जरूरतमंद जिका विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, मतलब कण है।

0: जी मात्रा है वह खराब हो जावे, नष्ट हो जावे। तो इन स्थिति में अपा आज वक्त में यदि अपा खेतीबाड़ी करा तो सबू पहला जरूरी है कि पहला अपा फसल उत्पादन पहला पहला अपारे मृदा स्वस्थ कार्ड बनावा और उन मृदा स्वस्थ कार्ड रे मार्फत सिफारिश रे अनुसार ही अपा खेती करा कि अपारी जमीन किसी है और खेती और कोई कर ला तो उनमें कहीं उत्पादन अपारे बहुत कम हो जाए। तो ऐडी स्थिति में अपा ने सोइल हेल्थ कार्ड रे मार्फत सिफारिश अनुसार ही खेती करनी चाहिए।
1: दीवान भाई, आ भारत सरकार की एक योजना है

0: दीपाली जीरो गाउडो अबार सुनियो सेनारा वायरिया। देखो बजरंग भाई के अपारे अठे प्रकृति पर्यावरण सु जुड़ी है और प्रकृति पर्यावरण में कदी कदी जिकी मरुस्थली वनस्पति है बा घनी खतरनाक हो जावे है। इनरो उदाहरण है विलायती बबूल। इन माथे आप छोटी सी बात करा क्योंकि किसाना ने इन बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। किसान भाई इन बारे में थोड़ो घणो ध्यान रखे तो आपरी खेती संबंधी आपरी जमीन आगते पागते इनसू थोड़ा संभल रहे।
1: तो दीवान भाई विलायती बबूल रो आप बतायो, तो विलायती बबूल पर्यावरण रे वास्ते एक बहुत बड़ो खतरो बनतो जा रही है। ओ विलायती बबूल जटे एकर लाग जावे बिरे आसे पासे दूजो पेड़ पौधो है वो उगई कोनी और इदी जड़ा इतनी

0: लंबी यानी 25 उड़ेर 50 फीट ताई जमीन में गहरी जाप रेवे के सगड़ो पानी चूस लेवे। कुएं रो जलस्तर है वो 10 फीट नीचे जाप रहे 5 साल में। तो ओ विलायती बबूल है वो दिन में 50 लीटर ताई पानी पी जावे। अपारे इन क्षेत्र में पानी की बियाई कमी है और वो पेड़ जठे लाग जावे तो जमीन ने बंजर कर देवे। इरे पत्ता माथे एक तरह केमिकल निकले है जिको आप रे आसे पासे दूजी घास या फसल उगण दे कोनी और पशुआ वास्ते भी वो खतरनाक है। तो दीवान
1: बिल्कुल इरमया जिकी पत्तियां है जिकी फलियां बोला आपा पातरिया बे यदि खावे तो अपारे जिकी भेड़ है बकरी है बियारा दांत अमूज जावे बे दांत गिर भी जावे बियारा जबड़ा जाम हो जावे और बियारे पेट में आंता संबंधी भी कदी कदी रोग हो जावे। और अपन जिके फलियां ने अपा प्रोसोपिन नाम रो जो जहर हुए वो होया करे इनमें इन खातर ए पेट रे आंता में पशु रे घाव भी कर देवे।
0: तो दीवान भाई कहने की बात आ है कि ओ जको विलायती बबूल है इरे प्रति आप सावचेत रहो सजग रहो। इन्हें खरपतवार घोषित करीज गयो है इरा नुआ पौधा नहीं लागे और बीज फैले भी फली ने लागण सूपेली आप काट देवा और देसी पेड़ लगाओ यानी कि खेजड़ी नीम बोरियारी बोटी रोईडो कुमट ए आप लगाओ पर्यावरण सुधरेला वन विभाग में पौधा फ्री में मिले है और ग्राम पंचायत में आप बैठे संपर्क करा तो आपने ए पौधा सोरा सोरा मिल जावे।
1: और यदि आपने समूल कई भाई रे बाड़े रे माया या खेत रे माया ओ विलायती बबू लाग चुकियो है डाणी रे कन्ने आगती पाकती तो इन्हें मिटाउन वास्ते आपा इन्हें ऊंडो जड़ू खोद जेसीबी बारे निकाला और इन जड़रे माया आपा नमक डाला या फिर डीजल तेल वगैरह डाला तो ओ पाछो वीरो जो पौधो है पाछो जड़ू नहीं निकले। इन खातर यह चीज़ आप अपना पर और विलायती बजूर ने समूल नष्ट कर सका। यदि अपने पर्यावरण वास्ते क्षति पहुँचारियो है अपारे खुदरी खेती खातर याद नुकसान पहुँचारियो है तो किसान भाई आपने नहीं रखा और धीरे धीरे अपा इन्हें खत्म कर दा तो अपारे प्रकृति अपाऊँ और खत्म हो जावेला और प्रकृति संरक्षण में योगदान रहे।
0: दीवान भाई थे पहली वादो करियो हो हरजस सुना उन रो तो चालता चालता सुना आपा और रामदेव बाबे रो हरजस
1: हरजस सुनो सा।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम इन हर जसरे साथ ही हो रियो पूरो दोषी का आपरे साथी दीवान दान रत्नु
1: और बजरंग सारस्वत ने
0: गणान गणा
1: राम
0: राम राम, राम, राम सा।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे दीवान दान रत्न और बजरंग सारस्वत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 7:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

सुगम संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सलाहुद्दीन अहमद की आवाज में ये खूबसूरत गजल।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आपने मोहम्मद अजीज और आशा भोंसले की आवाज में मुद्दत फिल्म का ये खूबसूरत नगमा सुना। आइए अब सुनते हैं यशुदास की आवाज, फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। कार्यक्रम का आगाज मेहंदी रत्ता, उमेश मेहंदी रत्ता की आवाज के साथ।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। कार्यक्रम का आगाज मेहंदी रत्ता, उमेश मेहंदी रत्ता की आवाज के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा

0: कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत

0: किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कर लेते हैं।
1: द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बिकम अ लाइफलाइन फॉर फार्मर्स एज द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 265 मिलियन टन्स इन 2013-14 टू अराउंड 358 मिलियन टन्स इन 2024-25। इंडिया हैज ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर सरपासिंग चाइना विद अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ ओवर 154 मिलियन टन्स। टुडे द इंडियन फार्मर स्टैंड्स नॉट जस्ट एज अ कल्टिवेटर बट एज अ

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

हीना, जी हाँ, ये नाम था फिल्म का जिसका नगमा अभी आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर और साथियों की। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपके चुपके।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से गीत।

दोस्त फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और शत्रुघ्न सिन्हा की। पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये सदाबहार गीत। आवाज है लता मंगेशकर की।

पुराने फिल्मों से गीत, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है गोपी।

इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाएंगे कबड्डी खिलाड़ी कृष्णा वृद्धा से संजय दत्त की बातचीत। यह आकाशवाणी नागौर केंद्र का अंशदान है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम के साथ साथ ज्ञानवर्धक जानकारियां भी मुखातिब करवाएं, जिन्होंने और न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। हम उन प्रतिभाओं को भी तराशते हैं जिन्होंने खेलों में भी अपना मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज हमने अपने आकाशवाणी के स्टूडियोज में आमंत्रित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्लेयर कृष्णा वृद्धा को। हम आपको बता दें, कृष्णा वृद्धा ने अक्टूबर 2025 में बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में इनकी पूरी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो आज बातचीत इनसे की जाएगी। सबसे पहले तो आकाशवाणी की स्टूडियोज में कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सर।
1: तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। जैसा कि आपको पता है कि नागौर जैसी ऐतिहासिक, जिसमें मीराबाई, वीर तेजाजी जैसी पृष्ठभूमि रही है, तो उस जैसे शहर से और आपने इतने बड़े लेवल पर एक मुकाम हासिल किया और नागौर ज़िले का नाम रोशन किया, तो वो सफ़र कैसा रहा? आपने कहाँ से मतलब कबड्डी को एज ए खेल चुना और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे ये सफ़र रहा आपका?
2: मैंने पहले अपने गांव से स्टार्ट किया था खेलना, ऐसे पेरेंट्स का सपोर्ट और गांव में प्रैक्टिस की, उसके बाद यहाँ नागौर में प्रैक्टिस करने आई। अभी यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए सोनजी सर के पास प्रैक्टिस करते हुए।
1: कृष्णा जी, हमें बताइए कि खेलों के प्रति आपका रुझान कैसे पैदा हुआ और कबड्डी को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि महिलाओं के लिए एथलेटिक्स एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: हमारे गांव में लगभग कबड्डी खेलते थे सभी, तो हमारे भैया वगैरह सब कबड्डी खेलते थे, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया।
1: तो कहने का मतलब यह है कि आपके घर में एक खेलों का वातावरण रहा और एक पृष्ठभूमि मतलब घर में ही तैयार हो गई थी कि खेलों में जाना ही है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने पहली बार भारत की जर्सी पहनी थी तो वो लम्हा कैसा था, वो पल कैसा था, आपको कैसा महसूस हुआ?
2: हर एक खिलाड़ी का सपना होता है अपने देश के लिए खेलना, तो बहुत अच्छा लगा था उस वक्त।
1: और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, सबसे चुनौतीपूर्ण जो लम्हा आपका, जो कोई याद हो आपको, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जब खेल रहे थे तो सबसे कठिन और विरोधी टीम कौन सी थी और आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने किस तरीके से उस चुनौती को पार किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की समस्याएं आती हैं।
2: सबसे ईरान की टीम।
1: तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी आप लोगों ने प्लान की थी कि उससे आप ओवरकम हो पाए?
2: हमारे कोच वगैरह ने हमें पहले ही बता दिया था उनके बारे में, तो सब ने मिल के एक साथ की और वो हो गया।
1: अच्छा, हम देखते हैं कि कबड्डी जो है कि एक परंपरागत खेल है, भारत में बहुत पुराने समय से कबड्डी खेला जा रहा है। आज के दौर में हम बात करते हैं, तो आज आप क्या देखती हैं कि कबड्डी में कुछ बदलाव आपको नजर आता है? किन टेक्निक्स का विकास हुआ है, किस तरीके से मतलब कबड्डी डेवलप हुई है? क्योंकि पहली कबड्डी जो पहले हमारे परंपरागत पूर्वज लोग खेलते आ रहे थे और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कबड्डी है, क्या अंतर है?
2: अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले ये गेम सिर्फ ताकत का था, इस वक्त ये गेम दिमाग और स्किल का भी है। इसमें ताकत की ज़रूरत होती है पर स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: स्किल जी। अब हम बात करते हैं कि नागौर में, आप नागौर से संबंध रखती हैं और नागौर से आपने ये सफ़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तय किया था। नागौर में अगर खेल सुविधाओं की हम बात करें तो क्या मतलब आपका डेली रूटीन रहता है और नागौर जैसे ज़िले में खेलों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब किस तरीके का परिदृश्य है, क्या रुझान है लोगों का?
2: यहाँ पे हम स्टेडियम प्रैक्टिस करते हैं सर के पास, तो अच्छा सभी गेम्स हैं, बैडमिंटन है, जैसे कुश्ती है और ट्रैक वगैरह सबकी व्यवस्था है, हैंडबॉल का भी है, सब चीज़ों का है। तो अभी भी स्टेडियम में हो रहा है काम, बन रहा जिम वगैरह सब है।

0: कबड्डी की तो सभी सुविधाएं हैं, सभी गेमों की सुविधाएं मिलेंगी आपको।
1: जी बहुत अच्छी बात है। देखो नागौर में रूढ़िवाद और अंधविश्वास भी काफ़ी है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, तो आपको भी ऐसी कोई चुनौती का सामना करना पड़ा कि एकदम से ये खेलों में जा रहे हो आप इस
0: नहीं
1: तरीके
0: सर,
1: से?
0: ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक।
1: साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं खिलाड़ियों के लिए, प्रोत्साहन के लिए, कि उनको बहुत सारे संबल दिए जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक संबल हैं या फिर किसी भी प्रकार की सहायता दी जा रही है, तो उनको लेकर के आपका आपके क्या विचार हैं?
0: मैं अभी हमारे जैसे ये हुए थे तो उनके भी, उनके लिए भी दिया गया था, हमें जैसे कि अमाउंट मिला तो वो आ गया अभी। तो इनका जैसे एशियन गेम थे ना, उनका आ गया अभी, और सभी जैसे जूनियर वगैरह में मेडल वगैरह के फॉर्म भरे हैं तो वो अभी बाकी है।
1: कृष्णा जी एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि आपका डेली रूटीन है, उसमें खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी डाइट एक तो, और फिर उनकी लाइफस्टाइल और डेली रूटीन क्या है, वो बहुत मायने रखता है एक खिलाड़ी के लिए, क्योंकि इसमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और क्या आपका डेली रूटीन रहता है सुबह से लेकर के शाम तक की आपकी पूरी जो दिनचर्या का शेड्यूल है उसको बताएं?
0: सुबह हमारा ग्राउंड लगता है 5:30, 5:30 से हमारा 8:30 तक प्रैक्टिस होती है, जिम वही जाते हैं और ऐसे स्किल वगैरह भी करते हैं, और फिर दिन में रेस्ट, और शाम को लगता है हमारा ग्राउंड 5:30 से 7:30 के बाद ही ऑफ होता है।
1: तो इसमें आप किस तरीके से, आप किस प्रकार की डाइट लेते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं वो थोड़ा बताएं?
0: जैसे जिम वगैरह करते हैं तो वहाँ पे तो हमारे वो ट्रेनर भैया सर हैं तो वो करवा देते हैं हमें जिम में सब, और जैसे हम खुद करते हैं तो सर हैं, सर करवाते हैं, सोनजी सर, और डाइट वगैरह तो सब यही जो बिदाम वगैरह ये सब लेते हैं।
1: एक और चीज़ आती है कि आप युवा हैं अभी और साथ साथ खेलों के साथ साथ पढ़ाई का भी हमें एक बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है खेल के साथ साथ, तो इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य कैसे बनाते हो, मतलब संतुलन कैसे? अभी फ़िलहाल आप क्या पढ़ाई कर रही हैं और खेल के साथ साथ आप पढ़ाई को कितना समय दे पाती हैं? क्योंकि आजकल युवाओं में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर हम खेल पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, और पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे करते हो?
0: अभी तो मैं कॉलेज में हूँ सेकेंड ईयर, तो इतना टाइम तो नहीं मिलता, पर मिलता है तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं।
1: अच्छा, जैसे कभी खिलाड़ियों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है कि खेल के दौरान उनको अक्सर चोट भी लग जाती है, तो इंजरी के दौरान किस प्रकार के चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर आप कैसे मतलब अपने आप को वापस खड़ा करते हो, कैसे मजबूत रहते हो, उसके लिए क्या तकनीक अपनाते हो?
0: हम फिजियो वगैरह ये करते हैं पहले, और फिर तो रेस्ट जैसे हो गया तो फिर अगर फिजियो से नहीं हुआ तो फिर तो डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, फिर अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर तो रेस्ट, फिर उसके बाद ही वापस करते हैं।
1: जी
0: रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन, इसका आपने नाम सुना होगा, अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसका क्या रोल है, मतलब कबड्डी की जो प्रतिभाएं हैं राजस्थान में उनको तराशने में राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन का कितना रोल रहा आपकी सफलता में?
0: राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि ये एक फेडरेशन है, फेडरेशन का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, तो वही सब करवाते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह, उनके हिसाब से सब होता है।
1: तो हाल ही में बहरीन में जो आयोजित हुई थी अंडर 18 एशियन यूथ गेम्स में आपकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो इसके अलावा आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पर और खेल चुकी हैं उसके बारे में भी बताएं?
0: मैं अंडर 18 से पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ, सबसे पहले सब जूनियर खेला था, उसके बाद स्कूली 17 खेला जिसमें ब्रॉन्ज मेडल था, उसके बाद जूनियर खेला, उसके बाद फिर जूनियर खेला उसमें ब्रॉन्ज मेडल था, उसके बाद खेलो इंडिया, उसके बाद फिर जूनियर और अंडर 18 नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट और अंडर 18 इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट।
1: जी तो मतलब आप कबड्डी से कब से जुड़े हैं वैसे?
0: मैं कबड्डी से यहाँ 2022 के बाद मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया था।
1: तो इन 4 सालों के अंदर ही आपने इतनी जल्दी दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता में शामिल हो गए, तो कैसे अपने को एकदम

0: तैयार कर लिया।
1: ऐसे मैं खेलती थी पहले, पर ऐसे कोई ऐसे नहीं था कि कबड्डी में ही जानना है।
0: जी
1: सब खेलते थे तो मैं भी खेल लेती थी। तो मेरे जैसे गांव में प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ पे हमारे सर थे रतन जी सर, उन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई। फिर ऐसे जूनियर वगैरह खेल लिए थे पहले ही, फिर यहाँ पे आई तो उसके बाद सर के पास प्रैक्टिस की, अच्छी प्रैक्टिस हुई तो इंडिया खेल लिए।
0: तो एक आम जो युवा है, मतलब जो अभी पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो अगर वो खेलों में आना चाहता है, तो उसको अचानक से अगर लग रहा है कि मुझे खेलों में जाना चाहिए, तो कैसे मतलब वो जुड़ेगा? उसके लिए क्या एक रोड मैप रहता है?
1: ऐसे अचानक से तो खेल में आना नहीं हो सकता, क्योंकि खेल उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, ऐसे डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है। तो अचानक से सब कुछ तो नहीं होता सर।
0: लेकिन शुरुआत मतलब कब उसको शुरू कर देना चाहिए कि हाँ इस ये मोमेंट है, या स्कूल में किस क्लास से या फिर किस एज ग्रुप
1: अगर ऐसे
0: से?
1: कोई बच्चा बचपन से खेल रहा है तो उसे तो स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर ऐसा है कि कोई बच्चा 11th 12th में स्टार्ट कर रहा है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं उस वक्त भी, जूनियर सब जूनियर स्कूली सभी में मिल जाना।
0: जी। अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे नागौर के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, जो आपके इस इंटरव्यू को सुन रही हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि खेलों में मतलब क्या भविष्य देखती हैं आप? क्या एक संदेश रहेगा आपका ओवरऑल कि उनको जुड़ना चाहिए, और जुड़ना चाहिए तो किस प्रकार से उनको जुड़ना चाहिए?
1: अगर खेलों से जुड़ना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं खेलों से जुड़ने के लिए। कबड्डी में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी लीग वगैरह हो रहे हैं, सभी टूर्नामेंट्स भी आते हैं। तो अगर गेम से जुड़ना है तो बहुत हैं, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो भी यहाँ पे नागौर में तो अच्छी है, प्रैक्टिस होती है स्टेडियम में।
0: तो श्रोताओं, आज हमारे बीच थी कृष्णा विरदा। आपने हाल ही में जो बहरीन में अंडर 18 एशियन यूथ गेम्स हुए थे, उसमें भारतीय टीम को गोल्ड मेडल हासिल कराया था। आपने न केवल नागौर का बल्कि राजस्थान, पूरे देश का नाम रोशन किया। आज आपने अमूल्य विचार हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज में हमारे साथ साझा किए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कबड्डी खिलाड़ी कृष्णा वृद्धा से संजय दत्त की बातचीत। ये आकाशवाणी केंद्र नागौर का अंशदान था।

0: अब हम आपको सुनवाते हैं शतरंज खिलाड़ी आशी उपाध्याय से गोपाल लखन की बातचीत।
1: श्रोताओं, खेल जगत कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक नन्ही सी शतरंज खिलाड़ी जिसका नाम है आशी उपाध्याय। आशी, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में स्वागत है, वेलकम।
2: धन्यवाद।
1: आशी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इतनी छोटी हैं, शतरंज का शौक कैसे लग गया?
2: जब मैं 6 साल की थी तब एक दिन मेरी मम्मा मेरी बड़ी बहन को एक चैप्टर पढ़ा रही थी, नाम रोशन करने वाला बालक। वो विश्वनाथन आनंद सर पे था और उससे मुझे पता चला कि शतरंज भी कुछ होता है। उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे एक चेस बोर्ड ला के दिया। फिर जब मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा तब मम्मा ने एक एकेडमी ज्वाइन कराई थी।
1: फिर आपको समझ में आने लगा कि कैसे खेला जाता है?
2: हाँ जी, मेरी मम्मा ने मुझे सबसे पहले सिखाया था।
1: तो मम्मा आपकी पहली टीचर है?
2: हाँ जी,
1: मतलब जो आपकी गुरु है, कोच, जिन्होंने आपको शतरंज के प्रति इंस्पायर किया है, उसकी तरफ मोड़ा है। जब आपने पहला मैच खेला था आशी, और आप कह रही हैं कि 6 साल की थी तब से आपने शुरू किया था, तो पहला मैच शायद 6.5-7 साल की उम्र में खेला होगा
2: जी।
1: बताइए कैसा रहा अनुभव?
2: मुझे याद है कि मैं जब पहली बार एक स्टेट टूर्नामेंट था जो कि जयपुर में था वो मैं खेल रही थी, तब मैं बिल्कुल बिगनर थी और मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था और मैं ऑब्वियसली हार गई थी, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था पहली बार खेल के और उसके बाद मैंने रेगुलर टूर्नामेंट्स खेले।
1: अच्छा, पहली बार जब मैच खेलने की थी तो नर्वसनेस थी, जयपुर में हुआ था वो मैच?
2: हाँ जी, जयपुर में ही था और तब तो मैं बहुत ही छोटी थी।
1: कौन से मोहरों से खेलने का मौका मिला आपको?
2: ब्लैक।
1: ब्लैक, अच्छा। अच्छा आशी, पहले मैच में हारने के बाद में फिर आपने देखा होगा कि काफ़ी चैलेंज हैं इसमें, आपको किस तरह के चैलेंज लगते हैं शतरंज के खेल में?
2: आपको हमेशा अपने ओपोनेंट से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है और ओपोनेंट के थ्रेट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, खुद भी अपने थ्रेट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप इतना अटेंटिव नहीं रहते हो तो हार सकते हैं।
1: हमने सुना है कि शतरंज को देखने के लिए ऑडियंस नहीं होती, जबकि और गेम्स में ऑडियंस होती है, काफ़ी शोरगुल होता है और वो उससे हम प्रभावित भी होते हैं, हमारे गेम में कुछ अच्छा हो जाए, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल। लेकिन

0: चेस में ऐसा नहीं है, तो जो माहौल होता है बिल्कुल शांत पीसफुल होता है। पहला जो आपको कैसा लगता है बिना ऑडियंस के खेलना?
1: बिना ऑडियंस के खेलना थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि चेस में आपको सोचना पड़ता है, तो ऑडियंस से जनरली आप डिस्टर्ब होते हैं।
0: जब आपको बाहर जाना पड़ा टूर्नामेंट खेलने, मम्मा साथ गए थे, पापा कैसे सपोर्ट बोला
1: हमेशा
0: परिवार
1: मेरी
0: का?
1: मम्मा साथ गई हैं ज़्यादातर, पापा भी कभी कभी कुछ टूर्नामेंट्स में मुझे लेके गए हैं, बट ज़्यादातर मेरी मम्मा साथ जाती हैं। कभी कभी मेरी सिस्टर भी जाती है, या फिर उसे काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, घर पे रहना पड़ता है। और हमेशा मेरे कोच नितुल सर ने बहुत सपोर्ट किया, वो भी साथ में टूर्नामेंट्स जाते हैं।
0: चेस खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है, अभ्यास बहुत करना पड़ता है, कोचिंग भी लेनी पड़ती है। ऐसे में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती?
1: जी होती है, मैं स्कूल तो इतना रेगुलरली नहीं जा पाती हूँ, बट आई ट्राई टू स्टे इन टच विद स्टडीज़। मैं स्कूल के साथ साथ पढ़ाई करती हूँ, मैं स्कूल तो नहीं जा इतना जा पाती हूँ, बट घर पे पढ़ाई करती हूँ।
0: जैसे आपने बताया था शुरू में कि मम्मा एक किस्सा पढ़ा रही थी और जो नाम रोशन करने वाला बालक, और उसको सुनकर आपने चेस खेलने का निर्णय किया, तो मम्मा ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया, पापा भी उतना ही सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए, या वो कहते हैं कि नहीं पहले एकेडमिक पढ़ाई पूरी कर लो?
1: नहीं, दोनों ही बिल्कुल सपोर्ट करते
0: दोनों
1: हैं।
0: सपोर्ट करते हैं। छोटे टूर्नामेंट से जब फिर बड़े टूर्नामेंट में गए आप, इंटरस्टेट अभी अभी आपने जीता है, कैसा रहा? ये बड़ा मैच था और काफ़ी सारा प्रेशर रहा होगा दिमाग पर।
1: हाँ जी, जब मैंने पहली बार नेशनल टूर्नामेंट खेला था तब तो मेरी कोई रैंक नहीं आई थी, बट जब मैंने सेकंड अपना नेशनल टूर्नामेंट खेला तब मैं 9 साल की थी, वो अंडर 9 नेशनल था, और तब मैं 4th आई थी।
0: फिर फोर्थ आने पर आपको कुछ अच्छी
1: हाँ
0: फीलिंग
1: जी
0: आई?
1: बिल्कुल, उसमें क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छा उसके लिए
0: अच्छा, जब आपने मैच जीता फिर मम्मी पापा ने शाबाशी दी आपको,
1: हाँ जी
0: कुछ यूं लगा कि आज आशी ने बहुत बड़ा नाम किया है,
1: जी
0: क्या कहा?
1: जब मैं पहली बार स्टेट में मेडल लेकर आई थी, तब मैं अंडर 11 स्टेट में 2016 में सेकंड आई थी, और मेरा अखबार में पहली बार नाम आया था, तो मैं बहुत खुश हुई थी। तो मैंने मम्मा से कहा था कि देखो, मैं भी नाम रोशन करने वाला बालक बन रही हूँ।
0: तो इस बात को लेके मम्मा बहुत खुश हुई
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हमारा कोई रोल मॉडल होता है उस गेम से रिलेटेड, या कोई और भी हो सकता है। चेस को लेकर आपका कोई रोल मॉडल है, आदर्श
1: हाँ
0: प्लेयर?
1: जी मैंने स्टार्ट भी विश्वनाथन आनंद सर को देख के किया, और वही मेरे रोल मॉडल हैं।
0: क्या खासियत है उनमें?
1: इंडिया के तो वो बेस्ट प्लेयर हैं ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और वो काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ।
0: अच्छा, अटैकिंग खेलना भी एक आर्ट है इसमें, शतरंज में तो फिर डिफेंस भी होता होगा।
1: जी बिल्कुल होता है,
0: किस तरह से बचाते हैं अपने आप को?
1: ओपोनेंट की थ्रेट्स को रोकते हैं, उनको हम पे अटैक करने से रोकते हैं, और अपने थ्रेट्स लगाते हैं उन पे, काउंटर अटैक करते हैं।
0: सामने शतरंज की बिसात बिछी हुई है और सामने वाला खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है, ऐसे में उसके मन को पढ़ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये एक खिलाड़ी को आना चाहिए,
1: जी
0: किस तरह से पढ़ते हैं आप अपने विरोधी खिलाड़ी को?
1: जनरली ओपोनेंट की साइकोलॉजी उसकी मूव्स में दिख जाती है, क्योंकि मतलब अगर वो थोड़ा स्लो खेलता है या फिर थोड़ा अटैकिंग खेलता है, उससे पता चल जाता है कि वो डर रहा है, या फिर वो कैसे खेल रहा है, उसके क्या प्लान्स हैं, वो किस साइड अटैक करने की कोशिश कर रहा है।
0: तो ऐसा नहीं लगता कि शतरंज एक साइको गेम है, मनोवैज्ञानिक,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: काफ़ी सारी चीज़ें आपको माइंड में ही चलती रहती है कि इस तरह से मुझे अपना गेम बचाना है और इस तरह से अटैक करना है?
1: हाँ जी जी बिल्कुल, हमेशा हर गेम से पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और हर गेम से पहले नहीं तो आपको एक जनरल अपनी जो सारी ओपनिंग्स वगैरह पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है।
0: आशी, आपके कोच आपको किस तरह सिखाते हैं?
1: मेरी कोच मुझे ओपनिंग्स वगैरह प्रिपेयर कराते हैं, कई बार गेम्स से पहले भी चेंज करनी पड़ती है ओपोनेंट को देख के। उसके अलावा मुझे जनरली वो मिडिल गेम, एंड गेम, इन सब के बारे में वो मुझे काफ़ी प्रिपेयर कराते हैं।
0: कहते हैं कि एक स्टूडेंट मतलब एक खिलाड़ी में और उसके कोच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, और
1: जी
0: कोच कभी कभी नाराज़ होते हैं, तो फिर हम उनको किस तरह से रिएक्ट करते हैं? अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है आपको?
1: हाँ जी, कभी कभी सर डांट देते हैं तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब होती हूँ, बट इतना ऐसे कोई प्रॉब्लम
0: ऐसे में
1: नहीं
0: फिर
1: है।
0: मम्मी सपोर्ट करती है पापा, या कोच सर खुद ही आपको सपोर्ट करते हैं?
1: डिपेंड्स ऑन, कभी कभी मम्मा, जनरली सर का ही सपोर्ट करती है, कि अगर सर डांट रहे हैं तो सही है।
0: क्योंकि कोच आपकी बेहतरी के लिए
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: अच्छा, जब हम चूंकि अभी मैच खेल रहे हैं और अभी हमारी उम्र भी काफ़ी छोटी है, तो हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं कि मुझे चेस में ही आगे अपना करियर बनाना है, या मैं एकेडमिक कुछ अच्छा अचीव करके और किसी सर्विस में जाऊंगी, कुछ प्लान कर रखा है आपने? इसमें भी आपके मम्मी पापा कुछ हेल्प करते होंगे?
1: अभी तो मेरा चेस का ही है, मैं जब तक मेरा चेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं चेस को ही ज़्यादा

0: एडवर्टाइज करूँगी।
1: जब हार जाती हैं तो किस तरह रिएक्ट करती हैं?
0: अगर मैं कोई ऐसा लगता है मुझे मैंने अपना बेस्ट नहीं खेला तो मैं अपने आप से नाराज़ होती हूँ। और उसके अलावा वैसे अगर ओपोनेंट ज़्यादा अच्छा खेल रहा है मुझसे तो फिर यही है कि मैंने इतना अच्छा नहीं खेला।
1: कभी ऐसा हुआ एक आशी के आप जीत रही थी और जीतते जीतते हार गई?
0: हाँ जी ऐसा बहुत बार होता है।
1: ये कैसे होता है? गलतियां करते हैं खिलाड़ी या कुछ और कारण होता है?
0: कई बार होता है कि आप जीत रहे हो, जीतते जीतते आपसे एक मिस्टेक हो गई चेस में, आप लास्ट में भी कोई भी मिस्टेक कर दो तो कभी भी हार सकते हैं। लास्ट मोमेंट तक कुछ डिसाइडेड नहीं होता, गेम किसी भी साइड जा सकता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप हारते गेम भी जीत जाओ या जीतते गेम भी हार जाओ।
1: हर एक माता पिता चाहते हैं कि जब भी हमारे बच्चे खेलने के लिए जाएं किसी टूर्नामेंट में तो हमेशा जीत कर आएं। कोच का भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि मेरा स्टूडेंट बेस्ट करे। जब आप खेलने जाती हैं तो प्रेशर में रहती हैं कि नहीं मुझे जीतना ही है और अपने मम्मी पापा या अपने कोच के जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना है, ऐसा कुछ प्रेशर रहता है?
0: कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ कि जीतना तो है वो तो है ही, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही कि आप अपना अच्छा गेम खेलो। सर जो है वो मेरे वो तो इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैं गेम कैसा खेल रही हूँ, और रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है ही।
1: शतरंज के गेम में चूंकि प्रेशर बहुत रहता है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या आप कोई योगा या कोई मेडिटेशन इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं?
0: नहीं मैं ऐसे तो कुछ नहीं करती हूँ।
1: अच्छा, मम्मी और पापा के साथ में खुश रहती हैं, है
0: हाँ
1: ना,
0: जी
1: और शतरंज में अभ्यास करके ही आप अपने आप को टेंशन फ्री कर लेती हैं, ऐसा?
0: हाँ जी
1: चूंकि अभी तो आप खुद काफ़ी छोटी हैं, फिर भी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपकी उम्र के जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगी आप?
0: हर बच्चे में अपना अपना एक टैलेंट होता है, तो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में तो कोई और भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही जाएं या किसी और पर्टिकुलर फील्ड में ही जाएं, अपनी पसंद की कोई भी फील्ड चुन सकते हैं।
1: अपने खेल में और अपने पढ़ाई में किस तरह बैलेंस करती हैं?
0: मेरी पढ़ाई में बैलेंस करने के लिए मेरी मम्मा और ट्यूशन टीचर्स मेरी हेल्प करते हैं, और स्कूल भी काफ़ी सपोर्टिव है। स्कूल के टीचर्स भी मुझे बताते थे हैं कि ये पीछे से पढ़ाई में हुआ है, ये सब कवर करना है।
1: चलिए आशी, हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप शतरंज में बड़ा नाम बने इंडिया का और पूरे देश में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और वो जो आपने कहानी पढ़ी थी विश्वनाथन आनंद की, नाम रोशन करने वाला बालक, उसी की तरह आशी उपाध्याय भी शतरंज की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बने, नाम कमाए।
0: थैंक
1: आज आप
0: यू।
1: आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शतरंज खिलाड़ी आशी उपाध्याय से गोपाल लखन की बातचीत। श्रोताओं अब समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

खेल जगत। जी हाँ, ये नाम था कार्यक्रम का जो अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के दस बजकर 30 मिनट हुए। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अजब लोग रहा करते थे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों

0: जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said, both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said, Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only

215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए। इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब यहीं समाप्त तो होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।